2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

92.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया। आखिर जान का है जवाब।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है, आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता है ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ
1: एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए फिर।
1: ओ यस यस।

0: है तो रियाद रहेगा ना। गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल, भैया आखिर जान का है सवाल।
1: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

दोस्तों, जिसने ताला बनाया उसने चाबी भी बनाई, हर मुश्किल के साथ उसने राहत भी बनाई। अंधेरों को रचकर वो उजाले दे गया, रोने की वजह दी तो मुस्कान भी बनाई। समंदर अगर गहरे हैं तो किनारे भी हैं, राहें अगर कठिन हैं तो सहारे भी हैं। टूटने का डर रखते हो क्यों दिल में, जिसने इंसान बनाया हिम्मत भी बनाई। मत बैठो मायूस होकर हालात के आगे, वक्त ने ठोकर दी है तो राह भी दिखाई। यकीन रखिए उस रब की हर एक रजा पर, जिसने प्यास बनाई उसने नदियां भी बनाई। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। उम्मीद है आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की बहुत अच्छे से हुई है, बहुत प्यार से, बहुत खुश भरे लम्हों के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है और देर है तो एक प्यारे से गीत की, तो मनोरंजन की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों दिल है बेताब फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। तो बिल्कुल हम तो आ चुके हैं और आप सभी भी जुड़ चुके हैं इस प्यारे से कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ, इस प्यारे से सफर के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब रुख करते हैं मौसम की ओर। तो जहां मौसम कहीं कहीं तो बारिश से परेशान कर ही रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिश भी चाहिए, लेकिन धर्मशाला में हम बात करें तो फिलहाल 2-3 दिनों से अभी तक बारिश नहीं हुई है और इस समय तापमान जो है वो आप सभी महसूस कर सकते हैं लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों सप्ताह के दो दिन, अंतिम के दो दिन 18 और 19 जुलाई को कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है और ऐसे में लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से शुक्रवार तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो हो सकता है दोस्तों कहीं हो कहीं ना भी हो, लेकिन हाँ फसलों की हम बात करें, किसानों की हम बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं फसलों के लिए ज़रूरत है पानी की। वैसे इस बार पानी की बहुत दिक्कत भी हुई है कुछ कुछ जगहों में। तो खैर ये तो थी मौसम की अपडेट। और आज की हम बात करें तो आज 14 जुलाई 2026 का दिन, मंगलवार का दिन। तो आइए इसी प्यारी सी खूबसूरत सी अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। और सचमुच कहते हैं ना, कई बार जुबान से हम बहुत कम कहते हैं, लेकिन नैनों से, नैनों के इशारे जो हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। इशारों इशारों में बातें और हर दिल की बात बयां हो जाती है। हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जिंदगी की। तो दोस्तों, जिंदगी की कहानियों की बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन खैर, हमें कुछ बातों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कुछ बातों को ही अहमियत देनी चाहिए। और ख़ास करके आज के कार्यक्रम में बहुत ही ख़ास बात जो है वो करने वाले हैं। तो क्या बात रहने वाली है, क्या जो है ख़ास रहने वाला है, ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
1: सुनो मुझे, हानी

0: दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आप सभी जानते हैं समय समय के हिसाब से हर चीज की अहमियत है, तो इस समय जो है अभी वक्त है प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस प्यारे से मनोरंजन के सफर के साथ।
1: पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, गंगा देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक। शिमला में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2,200 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित, एडीबी को भेजा जाएगा फंडिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक, लोगों की रुचि के अनुसार आमंत्रित।

0: परंपरा और संगीत में गंगा का प्रवाह के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा शाश्वतता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय कला साहित्य पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में उसका विशेष स्थान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अनेक पीढ़ियों के कवियों कलाकारों और विद्वानों ने गंगा से प्रेरणा लेकर अपनी रचनाओं को समृद्ध किया है। इसी कारण गंगा भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गई है। शिमला के विधायक हरीश जनार्दन ने कहा है कि शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से वैकल्पिक सड़कें फ्लाईओवर और सुरंगें बनाई जाएंगी। जनार्दन शिमला में हिमाचल प्रदेश सड़क व अधोसंरचना विकास निगम द्वारा शिमला शहर में प्रस्तावित दो सुरंग परियोजनाओं के संबंध में आयोजित पहली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। अधिक जानकारी के साथ हमारे शिमला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, जलवायु अनुकूल एवं सुरक्षित संपर्क विकसित करना है और शिमला को लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत शिमला शहर के लिए 7 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बैठक के दौरान परियोजनाओं की प्रारंभिक रूपरेखा, संभावित लाभ, तकनीकी पहलुओं व निर्माण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इन सुरंगों के निर्माण से शिमला शहर में यातायात जाम की समस्या में कमी आएगी, यात्रा समय घटेगा। इसके अलावा विधानसभा के समीप बन रहा फ्लाईओवर भी दिसंबर 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से भी जाम से काफी निजात मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आयोजन इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने चंबा में मिंजर मेले को लेकर गठित सांस्कृतिक उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन ने मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का स्तर बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की रुचि के अनुसार इस बार ज्यादा अच्छे कलाकारों को किया जाएगा।
2: 26 तारीख से 2 अगस्त तक हमारा मिंजर इंटरनेशनल फेयर ये आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल फेयर है तो उसमें वो जो इंटरनेशनल कलर्स है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी परफॉर्मेंसेस हो जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लगे भी। एक तरफ हम अपने जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको भी इसमें प्रदर्शित करें, और दूसरी तरफ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेयर है उसमें भी हम कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करवाएं। इस विषय पे चर्चा
0: राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य में सतत कृषि को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। शिमला में नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बैंक के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4,213 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त वितरण किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.3% अधिक है। विवेक पठानिया ने बताया कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 पारंपरिक उत्पादों रणसिंघा, हिमाचली गलीचा और हिमाचल वुड क्राफ्ट के GI पंजीकरण में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि GI टैग प्राप्त चंबा चप्पल की बाजार संभावनाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि आम लोगों का उत्थान और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने कई प्रभावी योजनाएं आरंभ की हैं और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कड़े फैसले लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू सोमवार को हमीरपुर की ग्राम पंचायत सहानवी में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, प्राकृतिक खेती से तैयार फलों के लिए अलग से उच्च दाम निर्धारित करना और दूध के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि सहित कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका सीधा लाभ आम लोगों को हो रहा है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए हैं और विभिन्न बिजली प्रोजेक्टों से राज्य को अरबों रुपए का राजस्व प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का मंडी जिला में दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में इस योजना के तहत अभी तक 121 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाया

0: आ चुका है और 74 महिला व युवक मंडल इस वर्ष 1,22,000 से अधिक पौधे रोपित कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडल जिला संवाददाता।
1: बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना मंडी जिला में पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को भी नई दिशा दे रही है। योजना के तहत अब पौधारोपण और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय महिला मंडलों और युवक मंडलों को सौंपी जा रही है, जिससे पर्यावरण बचाने के साथ साथ गाँव में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। मंडी वन मंडल के वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महिला और युवक मंडलों को भागीदारी से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,000 पौधे लगाए गए। इस कार्य के लिए वन विभाग प्रति हेक्टेयर 1,20,000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पूरे वन वृत्त मंडी में अब तक 121 हेक्टेयर क्षेत्र के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 102 हेक्टेयर के पौधारोपण हो चुका है और 74 महिला एवं युवक मंडलों को 1,22,000 से अधिक पौधे वितरित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आयोजन निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाएगा। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदेश में अपनी आंतरिक संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी है। संगठन के चुनाव समन्वयक विवेक गिरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि संगठनात्मक चुनाव NSUI संविधान के अनुरूप संपन्न होंगे। इस चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य संगठन को प्रत्येक स्तर पर सशक्त बनाना, निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में संगठन अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। विवेक गिरी ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव का पहला चरण 24 जुलाई से जबकि दूसरा चरण 7 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून की रफ्तार धीमी रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मॉनसून में फिर से तेजी आने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है और अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है। इससे राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज से 17 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, बाबा बालकनाथ मंदिर में चढ़ावे की 99 ग्राम चांदी कर दी गायब, विभागीय ऑडिट में खुलासा। हिमाचल दस्तक और दिव्य हिमाचल ने BBMB में हिमाचल के लंबित हिस्से को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को लगभग एक जैसी सुर्खी दी है, सुक्खू सरकार के BBMB एरियर को वापस लेने की प्रयास तेज। दैनिक जागरण की एक खबर है, सुक्खू बोले गलतफहमी में ना रहे भाजपा, दोबारा हम ही आएंगे सत्ता में। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है, शोंगटोंग करछम परियोजना मार्च से होगी शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मंडी जिले में लगातार बढ़ रहा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का दायरा अभी तक लगभग 1.25 लाख पौधे रोपित और प्रदेश में अगले कुछ दिन सुस्त रहेगी मॉनसून की रफ्तार। उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हमारा सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों 91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है, जिससे वो सही और गलत का अंतर अक्सर भूलने लगता है या भूल ही जाता है। विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जबकि अहंकार उसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले आता है। जो व्यक्ति अपनी सफलता पर घमंड करता है, वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों का भी पतन कर दिया। सच्चा महान वही है जो सफलता मिलने पर भी विनम्र रहे और अपने व्यवहार से लोगों के दिल को जीत ले। उसे कहते हैं हम असल में सही इंसान। और दोस्तों आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत हम करने वाले हैं। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर एक पड़ाव हमारी जिंदगी का बहुत ही खास होता है। उम्र की धूप ने चाहे चेहरे पर लकीरें लिख दी हो, हौसलों की किताब में अभी कई पन्ने बाकी हैं। जिंदगी हर सुबह नया संदेश लेकर आती है, बस मुस्कुरा कर चल पड़िए, अभी तो कई सफर बाकी हैं। तो इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज के कार्यक्रम में जो है वो क्या खास बात रहने वाली है। तो फिलहाल आपके सोचने तक आप थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और इंजॉय करते हैं तब तक कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कुमार सानू अनुराधा बॉडवाल की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। सपनों की भी कोई उम्र नहीं होती, जब भी आंखें बंद करते हैं सपने सामने आने लग जाते हैं। जी दोस्तों, तो वृद्धावस्था की आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। जीवन का हर पड़ाव जो है अपने साथ नई चुनौतियाँ और नए अवसर लेकर आता है। बचपन सीखने का समय होता है, युवावस्था संघर्ष और कर्म का, प्रौढ़ावस्था जिम्मेदारियों का और वृद्धावस्था अनुभवों की अमूल्य पूंजी का। तो दोस्तों, क्या ये जो हमारी अवस्था होती है, जो वृद्धावस्था, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उस अवस्था में नहीं जाएगा। जो उससे पहले ही दुनिया छोड़कर चले जाए वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में आए हैं तो वो हर एक पड़ाव को जीते हैं, अनुभव लेते हैं, सीख भी लेते हैं। तो किस तरह से हम इस अवस्था यानी कि वृद्धावस्था को भी प्यारा और खूबसूरत बना सकते हैं, इन पलों को यादगार बना सकते हैं, ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, जिस तरह से हम जिंदगी के इन पड़ावों में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी सी बातें, या तो यूं कहें कि जिंदगी से जुड़ी हर एक बात हमारे सामने या हमें जानना बेहद जरूरी है। तो उन्हीं में से एक खास बात दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी, एक तरह से जानकारी है और सतर्कता भी है आप सभी के लिए। दोस्तों, हिमाचल पुलिस के प्रसिद्ध पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स के प्रभारी विजय कुमार जी को पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जाना माना सा बैंड ये पुलिस टीम की तरफ से है और आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेस रहती हैं, एंजॉय भी किया है आप सभी ने खूब सारा। और किस वजह से इन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है, तो आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के आरोपों के चलते ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोस्तों, हर कोई आज के समय में सोशल मीडिया के ट्रेंड में जो है रंग रहा है, अपने हुनर को दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के चलते ये बैंड जो पुलिस बैंड है, इनके प्रभारी जो विजय जी हैं वो भी सोशल मीडिया में एक्टिव थे, और उसी के चलते उनका जो चैनल है मे बी मोनेटाइज हुआ होगा और उसी वजह से जो है इन्हें अपनी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। तो ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत खास है, सतर्कता से भरी है और सावधानियों से भरी है। पर एक सोचने वाली बात और भी है, एक सवाल यहाँ पे और भी उठता है, कौन सा सवाल उठता है जरूर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अक्सर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दुनिया क्या कह रही है उस बात की परवाह हम छोड़ दें या सुने ना या ना करें, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन जो है वो मन में ये बातें आ ही जाती हैं, दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित ज़रूर करती हैं, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। लेकिन खैर, कहते हैं बातें भी उन्हीं को होती हैं जिनमें कुछ खास बात होती है, और लोगों का काम तो कहना है, चाहे आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी वो कहेंगे और चाहे आप कुछ बुरा करेंगे तब भी वो कहेंगे। और सच्ची बातें उन्हीं को कड़वी लगती हैं असल में जिनमें वाकई में कुछ गलत होता है या वाकई में उन्होंने कुछ गलत किया हो, बातें उन्हीं को चुभती हैं। तो हम तो अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह से सच्चाई के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए, फर्क पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, वक्त चलता रहेगा, वक्त किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में बढ़ते रहना है, आगे की ओर चलते रहना है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, जिसका रब राखा है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, चाहे कोई कितना भी जो है प्रयास कर ले, जितने भी जतन करने हैं वो ज़रूर करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश, वो पूरी जी जान लगा देते हैं लोग दूसरों को नीचे गिराने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। खुद का पता होता है उन्हें कि कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है, लेकिन हाँ, अपनी कमियों को छुपाने के लिए या यूँ कहें कि उन्हें नज़रअंदाज करके बस दूसरों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे लोग बहुत से मिलते हैं ज़िंदगी में और मिलते रहेंगे। खैर, हमें कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ना है और फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का, जो अभी अभी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है इस प्यारे से कार्यक्रम में। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जहां कहा जाता है कि वृद्धावस्था अनुभवों की अमूल्य पूंजी की अवस्था होती है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव है, जहां अब कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं रहती। जबकि सच तो ये है कि यदि मन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हो, तो यही उम्र जीवन की सबसे खूबसूरत सी नई शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, आत्मविश्वास जो है हर किसी को जिंदगी में अपने साथ लेकर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि जैसे खुद पर विश्वास नहीं है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो हमें भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए, इन्हीं बातों के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के इस प्यारे से सफर को एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों बातचीत के साथ जानकारियों की अहमियत भी बहुत खास है, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी। कहते हैं शिक्षक की हमारी जिंदगी में बहुत ही अहमियत होती है, गुरु का दर्जा बहुत उच्च लेवल का होता है। दोस्तों प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वेस्ट टीचर एंड रिसर्च अवार्ड के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक शिक्षक अथवा विभाग अध्यक्ष 18 जुलाई तक आवश्यक दस्तावेजों सहित नामांकन प्रस्तुत कर सकेंगे। जी दोस्तों, तो बहुत ही खास पल होते हैं ये, क्योंकि दिन रात मेहनत के बाद ये पल हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, गर्व महसूस करने वाले ये खूबसूरत से पल। और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वृद्धावस्था में भी एक नई शुरुआत किस तरह से की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। एक समय था जब पूरा दिन काम करते रहते थे, लेकिन सालों तक जिस काम को पूरा दिन बीतता था उसके समाप्त होते ही खालीपन सा महसूस होने लगता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अब उनकी जरूरत किसी को नहीं रही, लेकिन जरूरत नहीं दोस्तों, रिश्तों की अहमियत और अपनों का साथ हमारे मजबूती बनाता है, हमारे उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और गहरापन जो है उनमें लेकर आता है। तो जरूर आप सभी जानते हैं रिश्तों की अहमियत कितनी है और कितनी होनी चाहिए। फिलहाल आइए दोस्तों इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब उनकी जरूरत शायद नहीं है, या फिर वो अपने आप को बोझ समझने लग जाते हैं, तो इसके पीछे भी रीजंस होते हैं। शायद उन्हें वो महसूस कराया जाता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। तो ये वहां पे होता है जहां हम मतलब के लिए रिश्तों को निभाते हैं, स्वार्थ के लिए रिश्तों को निभाते हैं। और जब ये सोच हम में आनी शुरू हो जाती है, खास करके वृद्धावस्था में, तो यही सोच जो है वो धीरे धीरे अकेलेपन, तनाव और निराशा को जन्म देती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये समय खुद को नए रूप में पहचानने का है। ये समय उन सपनों को पूरा करने का है जो कभी जिम्मेदारियों के कारण अधूरे रह गए थे या फिर रह जाते हैं।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो सेट से। जी दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं एक और खूबसूरत सी हास सी जानकारी। दोस्तों, भारत के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के लिए रूस ने बड़ा ऑफर दिया है। सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर वेस्ट टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मॉस्को ने दिल्ली संग मिलकर काम करने की बात कही है। यूक्रेन युद्ध में फंसा होने के चलते रूस ने ऑपरेशनल जरूरतों का हवाला देते हुए भारत को S-500 बेचने को मंजूरी नहीं दी थी, और ऐसे में रूस ने अब S-500 बेचने के बजाय भारत को सुदर्शन चक्र के लिए S-500 से जुड़ी क्षमताएं संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सीधे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना शामिल नहीं है, बल्कि भारत के साथ मिलकर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। रूसी प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया है। मॉस्को का ये प्रस्ताव संकेत देता है कि भारत का पुराना दोस्त रूस हथियार बेचने से आगे बढ़कर अब भारत के इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर में शामिल होने को भी तैयार है। बता दें दोस्तों कि भारत प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, तो अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे चीन और पाक। यार दोस्तों, जब देश की बात आती है तो एकजुट होने की भी बात आती है, लेकिन क्या हम एकजुट होते हैं या फिर हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, हालातों को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत कहते हैं ना कि इमोशनल सा समय होता है, सिचुएशन होते हैं, बहुत इसमें डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन खैर, हमें आपस में मतभेद नहीं बढ़ाना है, हमें आपस में एकजुटता को, प्रेम भाव को, अपनेपन को बढ़ाना है। तो फिलहाल आइए, इसी के साथ हमें कार्यक्रम में मनोरंजन को भी कंटिन्यू रखना है, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

वो एक दिन विश्वास भी तोड़ देता है। जो हर किसी की बुराई करता है वो आपकी भी बुराई जरूर करता होगा, आपके सामने नहीं पीठ पीछे ही सही। जो केवल काम पढ़ने पर याद करे वो रिश्ते नहीं निभा रहे, इस्तेमाल कर रहे। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं दिखता। अहंकार इंसान की बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेईमान व्यक्ति को मौका मिले तो वो ईमानदारी का भी फायदा उठा लेता है। अवसरवादी लोगों की दोस्ती मौसम की तरह होती है, समय बदलते ही रंग बदल लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता वो सीख भी कभी नहीं पाता। धोखा देने वाला अक्सर दूसरी बार धोखा देना और आसान समझता है। जिस इंसान के लिए केवल उसका फायदा महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपका दर्द कभी महत्वपूर्ण नहीं होगा। अच्छे दिल वाले लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं की तरह है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। जी दोस्तों, आज के समय में भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। जिसे हम बहुत ही मासूम सा, बहुत ही शरीफ, बहुत ही भोला समझते हैं, वो आपकी पीठ पीछे इस तरह से वार करते हैं कि आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन आप फिर हिम्मत करते हैं, जुड़ते हैं, वो फिर कोई ना कोई टेक्निक्स जो है वो अपनाते रहते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें अपनी तरफ से मेहनत करने दीजिए। आप अपनी ईमानदारी और सच्चाई की राह पर आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम भी क्यों सोचें दुनिया क्या कह रही है और क्या नहीं, हम भी एंजॉय करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, और वृद्धावस्था में भी एक नई शुरुआत की हम बात कर रहे थे, तो स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, ये तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था में सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है, और उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए। हर दिन सुबह उठकर आप वॉक पे जाएं, व्यायाम करें, योग करें, संतुलित भोजन, ये सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो नई शुरुआत करना भी आसान होगा। तो इसी के साथ एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला में बालिका कबड्डी खिलाड़ियों के लिए 15 और 16 जुलाई को आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चयन को ट्रायल लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रशिक्षण, खेल किट, आधुनिक खेल सुविधाएं, प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर, शैक्षणिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा खेल विज्ञान विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा। 15 जुलाई को सुबह 8 बजे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खेल परिसर क्रिकेट स्टेडियम के समीप धर्मशाला में रिपोर्ट करना होगा, जो चयन परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं। तो ये बहुत ही खास जानकारी भी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

न जाने कितने शौक पीछे छूट जाते हैं। आज देश भर में हजारों वरिष्ठ नागरिक कविता लिख रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, चित्र प्रदर्शनियां लगा रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, नई भाषाएं सीख रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर एक पल हमें एक नई सीख देता है। आज का समय डिजिटल युग का है, मोबाइल इंटरनेट और कंप्यूटर केवल युवाओं के लिए ही नहीं, वरिष्ठ नागरिक भी इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। नई तकनीक से डरना नहीं है, उसे अपनाना है। नए नए पहलुओं को हम जिंदगी में अपनाएंगे तभी तो कुछ नया करके दिखा पाएंगे, तभी तो खुद को बोझ के बजाय एक जरूरी पहलू अपने परिवार के साथ जोड़े रखने के लिए हम खुद को मजबूत कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, किसने क्या कर दिया ये तो समय ही जानता है और ऊपर वाला जानता है ना, क्योंकि कोई अपने दिल में क्या लेकर बैठा है क्या नहीं लेकर बैठा ये कोई नहीं जानता। यार दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज के इस बहुत ही प्यारे से सफ़र में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए फिर से चलते हैं एक बहुत ही खास जानकारी की ओर, क्योंकि समय की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती जा रही है आप सभी से दूर जाने की ओर। दोस्तों, देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत म्यूजिक एवं रैप प्रतियोगिता, स्लैम पोएट्री प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता तथा थीमेटिक डांस प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कला और अभिव्यक्ति के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। प्रतियोगिताओं में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से नशा मुक्त युवा, विकसित भारत, स्वस्थ जीवन शैली, सामाजिक उत्तरदायित्व, युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति, एकता तथा सकारात्मक जीवन मूल्य जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई गई है आप सभी के अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और आप सभी जानते हैं कि नशे की बात इस समय करना कितना ही जरूरी है, क्योंकि नशा जो है तेजी से आग की तरह फैलता ही जा रहा है, और जितना हो सके हमें अपना योगदान जो है इस अभियान हो चाहे कोई भी बात हो हमें जरूर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे युवा जो हैं इससे दूर रह सके, खुद की जिंदगी के बारे में सोच सके, एक सकारात्मक सोच की ओर बढ़ सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा मीठा सा गीत।

दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान लिए हर कोई मुसाफिर बनकर चल रहा है, पर दिल के दर्द का हिसाब कोई नहीं रख रहा। रिश्तों की भीड़ में भी अपनापन अक्सर खो सा जाता है और इंसान अपनी ही खामोशी में कहीं गुम हो जाता है। आजकल हर कोई साथ तो नजर आता है, लेकिन सच में किसी का साथ बहुत कम मिल पाता है। इसलिए कभी किसी की हंसी देखकर उसकी जिंदगी का फैसला मत करना, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है। भीड़ में खोकर भी जो खुद को ढूंढता है, वही इंसान अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, कम बातों के साथ ज्यादा गीतों के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम को संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है।

0: सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया अगर जान गए तो
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है, जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी के साथ जुड़ चुकी है आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। हर हफ्ते आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ, जो कि आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला में जो है अधिवक्ता के तौर पे अपनी सेवाएं जो है वो देती हैं। जी दोस्तों, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रूमा जी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास बातचीत में।
1: थैंक यू रुचिका जी। और कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान और हमारे हौसलों को उड़ान हर सप्ताह मिलती है हमारे चाहने वालों से, हमारे सुनने वालों से। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे चाहने वाले हमें रिस्पांस देते हैं और हमसे डिमांड करते हैं कि किसी खास विषय पे भी बात होनी चाहिए
0: जी।
1: और रुचिका, अभी अभी मेरी किसी दोस्त से बात हुई थी और हम बात कर रहे थे छुट्टियों के बारे में, और मेरे को पता है आप भी कल छुट्टी मना के आए हो, और जब हम छुट्टी मना के अपने काम पे वापस लौटते हैं ना, तो हमारे जो चेहरे पे रौनक होती है वो अलग ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, है ना, पूरे हफ्ते भर की जो थकान है वो खत्म हो जाती है, कितना मजा आता है ना। और एक तो महिलाएं शिकायत भी करती हैं कि हमारे हफ्ते भर का काम जो है वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो उसको करती हैं लेकिन खुश भी होती हैं क्योंकि अपने लिए भी तो थोड़ा सा समय हमें मिल ही जाता है
0: जी।
1: तो ये छुट्टी जो है ना, ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड सा गिफ्ट है जो सरकार ने हमें दे रखा है, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का इस छुट्टी के ऊपर अधिकार है।
0: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। और अभी आपने कहा कि जैसे मैंने अभी छुट्टी की थी और चेहरा बहुत खिला खिला सा नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बात आपको ये बताना चाहूंगी कि हर व्यक्ति के साथ या हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि बच्चों की हम बात करें तो उनका तो मन करता है कि पूरे हफ्ता भर छुट्टियां रहे तो ज्यादा बेहतर है।
1: बच्चों को तो देखिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, किसी ने अपने ननिहाल जाना है, किसी को अपनी बुआ के पास जाना है, किसी को मासी के पास जाना है, और जो हमारे शहरों में बच्चे रह रहे हैं ना अपने दादा दादी से दूर, वो बहुत एक्साइटेड हैं। अभी गांव में आएंगे और दादा दादी के पास रहेंगे, खेत खलिहानों में घूमेंगे, और स्पेशली आजकल ना आम का सीजन हो गया है, और आम के सीजन में क्या होता है बच्चों को बड़ा क्रेज रहता है जाके। देखो बाजार से आप जितने मर्जी आम ले आए, जब तक गाँव में जाके वो पत्थर से तोड़ के आम, पत्थर मार के आम नहीं जब तक तोड़ेंगे उनको मजा नहीं आता है। तो बच्चों के लिए ये भी अभी भी कहीं कहीं ये फन है जिसको बच्चे करते हैं, और बहुत एक्साइटेड भी हैं बच्चे कि अब आम भी पकने वाले हैं और हमें ये छुट्टियां जाके अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बितानी है। तो देखो मुझे लगता है छोटे बड़े हर किसी को छुट्टी का क्रेज होता है ना।
0: जी बिल्कुल। और रूमा जी यहाँ इसी के साथ एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी, जहाँ बहुत से लोगों को छुट्टियों का एंजॉय लेने का मन करता है, तो वहीं कुछ लोग जो होते हैं ना अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं या इतनी लगन के साथ काम करते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी काम ज्यादा हो तो वो खुद को ब्रेक नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो है हानिकारक रहता है।
1: बिल्कुल। और देखो हम अगर पूरा हफ्ता काम करते रहेंगे और बीच में ब्रेक नहीं लेंगे तो सही बात है, मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो हमारा ये खराब होते जाएंगे
0: जी।
1: और जब शरीर ही हमारा ठीक नहीं है, हमारा मन ही ठीक नहीं है, तो हम जो हमारा काम है उसको पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ नहीं कर पाते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो यही दोस्तों हमारा कहने का जो है एक तरह से तात्पर्य है कि जहाँ कुछ लोगों को छुट्टियों की खुशियां होती हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है काम को लेकर इतने ज्यादा जो है वो एक तरह से इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि नहीं हम एक भी छुट्टी ना करें, फटाफट से ये काम हम कंप्लीट करें, और वो कंप्लीट करने के चक्कर में और

0: काम जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेक हमारी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है।
1: बेहद जरूरी है। और बात छुट्टियों की चली है तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, संडे की छुट्टी, छोटे बच्चों का, आई थिंक मकड़ी फिल्म का गीत है ये, तो मुझे लगता है कि हमें सुन लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, अब रूमा जी ने इशारा कर दिया है मनोरंजन की ओर, तो आइए दोस्तों लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि छुट्टियां हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखती हैं, बहुत ही मनोरंजन लेकर आती हैं। तो बिल्कुल हम भी इस मनोरंजन ब्रेक के बाद वापस जुड़ते हैं आप सभी के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: बहुत ही प्यारा सा ये गीत था और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए हम सभी तैयार हैं दोस्तों।
1: जी बिल्कुल रूमा जी, और दोस्तों हमने छुट्टियों की बात कर ही दी है तो आइए रूमा जी से जानते हैं, क्योंकि हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो कहीं छुट्टियां मिलकर भी हम छुट्टियां नहीं कहते, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छुट्टियां दी ही नहीं जाती हैं और वो डर के कारण या हिचकिचाहट के कारण कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि कहते हैं ना दो वक्त की रोटी जो है ये बहुत कुछ करवाती है। तो रूमा जी आप इसके बारे में हमारे दोस्तों को भी बताइए कि ये आखिर हम छुट्टी की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई कब से थी और क्यों जरूरी है, किस तरह से हम ये छुट्टी के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका, देखिए अगर मुझे छुट्टी अच्छी लगती है तो मेरे साथ जो और काम कर रहे हैं या मेरे सबॉर्डिनेट जो हैं या मेरे कलीग्स हैं सबको छुट्टी की जरूरत होती है। और आपने सही कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको छुट्टी मिलती ही नहीं है, और ये है आम तबका, जिसमें हम मजदूर वर्ग की बात कर सकते हैं या घर में काम करने वाली बाई की बात कर सकते हैं, तो ये लोग छुट्टी के हकदार हैं, लेकिन इन लोगों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। इवन मैंने रुचिका देखा है कि हमारे घर में दिवाली है, लोहड़ी है, होली है, कई तरह के फेस्टिवल आते हैं, और ये लोग जो हैं, ये जो छोटा तबका जिसमें हमारी काम वाली बाई हो गई या मजदूर वर्ग हो गया जिनको हम अपने घरों के काम में लगाते हैं, तो छुट्टी वाले दिन भी हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम ये करें और हमारे लिए पकवान भी बना रहे हैं, मिठाइयां बना रहे हैं, हमारे घर की साफ सफाई कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद भूल जाते हैं कि त्योहार तो उनके लिए भी है। और आपने अक्सर देखा होगा ये जो हमारी काम वाली बाइयां होती हैं ना, इनको हम छुट्टी देते समय हमारी जो होती है बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मैंने अक्सर देखा, मैंने भी काम वाली रखी है और मुझे पता है कि जब काम वाली को छुट्टी आती है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब उसके बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, हैं तो ये भी इंसान
1: ही है और हर किसी भी अपनी फैमिली है।
0: बिल्कुल, और त्योहार भी है ना, उनके लिए भी दिवाली लोहड़ी होली उनके लिए भी त्योहार है, उनका भी मन करता है अपने बच्चों के साथ वो बैठ के त्योहार मनाए, अपने घर की साफ सफाइयां करें, अपने बच्चों के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन क्या होता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में ये लोग अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं, और कई बार मुझे इस तबके के लिए बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर परिवार के साथ रहकर अपने परिवार को खुश नहीं देखना चाहता है, उसके साथ त्योहार या कोई फेस्टिवल या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन है उसको नहीं मनाना चाहता है। लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि पैसे की तंगी या गरीबी के चलते ये लोग जो हैं मजबूर हो जाते हैं, जो भी इनका नियोक्ता है जिसके भी यहाँ ये काम कर रहे हैं उसकी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है एक तरह से,
0: वो उसकी धौंस भी सहते हैं, उसका जो नाजायज, मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये हमारी नाजायज डिमांड होती है कि हमारा जो वर्कर है जो हमारे घर में काम कर रहे हैं स्पेशली काम वाले जो वाइयां हैं, तो हम इनके लिए इनके से ये उम्मीद करते हैं कि ये एक भी छुट्टी ना लें। हम उनका बीमार होना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अरे ये बीमार हो गई क्यों हो गई, क्योंकि हम उसको इंसान की तरह कई बार मैंने देखा लोग ट्रीट करते ही नहीं है, तो ये सब गलत है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सरकार का वो है कि उन्होंने एक छुट्टी कम से कम हमारे लिए रखी है, वो है संडे, और ये संडे की छुट्टी सबके लिए होनी चाहिए। और मैंने अक्सर देखा है घरों में जो काम करते हैं या जो मजदूर वर्ग है, अभी हमारे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, देखो जी जान से मेहनत करते हैं, उनको भी संडे की छुट्टी नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि जब फसल का काम हो जाता है तो काफी टाइम उनको अपने लिए मिल जाता है, लेकिन एक ये तबका जिसकी हमने बात करी, इनको छुट्टी कहीं नहीं मिलती, ना हम देते हैं, शायद हमारी सरकारें भी इस ओर गौर नहीं करती हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे कानून बने हैं। और रुचिका आपने बात कही थी कि छुट्टी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हमारे भारतवर्ष में छुट्टी की शुरुआत हुई थी 10 जून 1890 को, और रविवार को छुट्टी का दिन आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो एक दिन की रेस्ट ले ले। इसमें स्कूलों में भी छुट्टियां हुई थी, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एक दिन के लिए वीकेंड रखा गया था, साप्ताहिक जो अवकाश था वो रखा गया था, और रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई थी।
1: जी बिल्कुल, तो रूमा जी अभी आपने कहा ना कि जिस तरह से हम घरों में जो है लोगों को काम करने के लिए रखते हैं, क्योंकि आजकल के समय में हम मानते हैं जरूरत है, क्योंकि जो घर में मतलब हस्बैंड वाइफ है या जो भी है तो वो दोनों वर्किंग है, तो ऑब्वियसली घर के काम के लिए टाइम नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो इंसानियत है हमारे अंदर, तो वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम इनसे 24 आवर्स भी अगर उन्हें मौका मिले काम लेने का, तो कई बार तो वो व्यवहार भी उस तरीके से करते हैं कि आगे वाला पर्सन
0: बिल्कुल। और देखो हमारे इस बुरे बर्ताव के बावजूद वो लोग मजबूर होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, खुद की काफी सारी जरूरतें हमारी रहती हैं वो पूरी करनी है। तो हमें इस तबके को थोड़ा एक रिस्पेक्ट की नजर से मुझे लगता है कि देखना चाहिए, क्योंकि है तो ये भी इंसान, जीने का हक इनको भी है। अगर हमें छुट्टी मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, हमें सरकार ने छुट्टी दे रखी है, तो इनको भी एक छुट्टी हम दे सकते हैं और ये इनका कानूनी हक भी है
1: जी।
0: और हम बात सिर्फ कर रहे हैं उस तबके की जिनको हमने एक थोड़ी सी पगार देते हैं और उसके बदले उनको पूरा महीना उनसे काम लेते हैं, उनका बीमार होने पे हम पहले बीमार हो जाते हैं। अगर काम वाली आई बाई आके हमें बोल देना सर में दर्द है या उसका पेट खराब है या उसको उसका बच्चा बीमार है, तो हमारी मुहें तन जाती हैं, उसको हमें हम उसको बीमार होने का हक भी नहीं देते हैं, तो ये बड़ी गलत बात लगती है
1: एक तरह से ना। हम जब पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं किसी पे कि हमने इन्हें काम के लिए रखा, तो हम एक गिलास तक उठा के ना रखे, मतलब इस तरह का बिहेवियर हम शो करते हैं
0: बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो भी इंसान है और हमें उनको इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके मन में भी हमारे प्रति अच्छी भावना आएगी। और देखिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे गलत बात है। हमें भी पता है कि एक व्यक्ति अगर हमारे घर में काम कर रहा है, थोड़े से पैसों के बदले में हमारे बर्तन धो रहा है, झाड़ू दे रहा है, साफ सफाइयां कर रहा है, कपड़े धो रहा है, तो उसकी मजबूरी रही होगी
1: बिल्कुल जी।
0: और संडे की छुट्टी तो मुझे लगता है कि काम वाली बाई को भी मिलनी चाहिए
1: जी बिल्कुल। और उस दिन घर पे जो भी लोग हैं वो मिल कर जो है काम कर सकते हैं, है ना, उन्हें भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगी एक दिन की और माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा
0: बिल्कुल। और मुझे लगता है रुचिका जब हम संडे का दिन अपने परिवार के साथ स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों को भी छोटे छोटे काम करना सिखाएंगे, उनको भी बताएंगे कि आज काम वाली वाई नहीं है और हमें अपने काम खुद करने हैं, तो हमारे बच्चों में भी एक काम करने की भावना आएगी। और वो भी और मैंने देखा है आजकल का हमारा जो रवैया है, हम अगर अपने बच्चों के सामने काम वाली के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि वो हमारी नौकर है और हमारा राइट है, हमने उसके साथ ऐसा बर्ताव करना है। तो ये सब चीजें हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमसे गलत भी सीख रहे हैं। ये चीजें रोकने के लिए संडे की छुट्टी उसके लिए होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे खुद भी अपने काम कर सके। नहीं तो जिस तरह का हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम बाहर का खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं और कोई भी हमारी हेल्दी लाइफ रूटीन नहीं है, और ऐसे में ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत सारी तकलीफें हमारी शरीर को, बीमारियां जो हैं वो घेर रही हैं। तो अगर हम एक दिन वर्किंग रखेंगे, अपने गार्डन का खुद देखभाल करेंगे, अपने घर के छोटे मोटे काम जो रोजमर्रा के हैं अगर हम खुद अपने बच्चों के साथ मिलकर करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो शारीरिक व्याधियां जो आजकल हमें घेरने लग पड़ी हैं, उनसे हमारे बच्चे काफी हद तक बचे रह सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों रूमा जी ने, क्योंकि जितना सुख सुविधाओं के अंदर हम चले जाते हैं उतना ही आलस जो है हमारे में आ जाता है। तो जो हमारे घर पे चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से आप उनसे काम ले रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें कब जरूरत है ब्रेक की, कब जरूरत है, अगर उनकी कोई मजबूरी है, कोई फैमिली इशू चल रहा है, तो उस समय भी उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, क्योंकि उस समय ना तो वो उस काम में ध्यान लगा पाएंगे ना अपने घर पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ध्यान उधर और काम हम वहां पे कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्या पता उनको और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बीमारियां लग जाए, तो ऐसे में नुकसान तो फिर दोनों ही तरफ होगा ना। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है मतलब कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
0: बिल्कुल
1: इनको निकाल देंगे कोई और हम रख लेंगे, है ना। तो ये रॉन्ग,
0: देखिए गलत बात है, हम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं और उनके अधिकार को हम हनन कर रहे हैं। देखिए छुट्टी के ऊपर सबका अधिकार है, अगर मैं 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम कर रही हूँ, तो मेरे घर में जो काम कर रहे हैं या जो मजदूर वर्ग है जो रोज दिहाड़ी लगाने के लिए निकलता है, उनको भी छुट्टी लेने का हक है। और अब एक और थोड़ी सी छुट्टी हम भी ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बातों से हमारे सुनने वाले हमारे दोस्त जो हैं वो नाराज ना हो जाएं,
1: कहीं वो छुट्टी पे ना चले जाए।
0: बिल्कुल, और छुट्टी का अधिकार तो सबको है, तो यहाँ पे संगीत सुनना भी हमारा अधिकार है, तो एक छोटा सा गाना सुन लिया जाए।
1: जी, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ।

0: दोस्तों 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो आज हम बहुत ही प्यारी सी और खास बातचीत लेकर आप सभी के साथ जुड़े हैं। छुट्टी किसको पसंद नहीं होती है, सभी को पसंद होती है। एक मौका होता है, एक अवसर होता है जहाँ अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ प्यारी प्यारी सी बातें की जाती हैं और साथ ही अपने माइंड को शांत किया जाता है।
1: बिल्कुल। और रुचिका, आपको मैं एक बात बताऊं, पूरा हफ्ता दौड़ धूप रहती है काम के सिलसिले में, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और जब ये संडे की छुट्टी आती है ना, तो मैं सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटा के 11 बजे के आसपास सोचती हूँ अब मुझे ना बिस्तर में चला जाना चाहिए, क्योंकि और फिर मैं दोपहर शाम तक, शाम की चाय के टाइम तक मैं सोती हूँ और बड़ा मजा आता है, फिर फ्रेश हो जाते हैं अगले हफ्ते के काम को करने के लिए ना।
0: जी बिल्कुल, ऐसे तो वो दिमाग में प्रेशर रहता है तो वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाता है। चलिए इन बातों को थोड़ा सा हम और गंभीरता की ओर लेकर चलते हैं, यानी कि जानकारियों की ओर लेकर चलते हैं, और थोड़ा सा क्यों ना रूमा जी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और देखा जाए कि इस छुट्टी का आखिर इतिहास क्या है, क्यों और कब से दी जाती है ये रविवार की छुट्टी।
1: देखो रुचिका, इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रोमन साम्राज्य में जो है 321वीं ईस्वी में छुट्टी का प्रावधान रखा गया था। वहां के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने

0: आधिकारिक तौर पर रविवार को छुट्टी की जो है घोषणा करी थी। उसके बाद ब्रिटिश काल में सन 1844 में भारत में रविवार का दिन छुट्टी का घोषित हुआ था। और आपको एक बात बताऊं रुचिका, जब ये हिंदुस्तान में भारतवर्ष में छुट्टी की बात हुई थी तो जो ब्रिटिश सरकार थी हिंदुस्तानियों को छुट्टी देने की फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। और उस समय के हमारे समाज सुधारक नारायण मेघाजी लोखंडे ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा था और इस छुट्टी की जो थी उन्होंने अप्रूवल करवाया था। और उसके बाद हमें छुट्टी संडे को मिलनी शुरू हुई थी। और उसी दौरान स्कूलों और कॉलेजों में भी बच्चों को जो है छुट्टी मिलनी शुरू हो गई थी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, खेल कूद में हिस्सा ले सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि पढ़ाई को ही सब कुछ मान लिया गया था। जिस दौर से हम गुजरे थे तो एक समय के लिए हमारे मन में ये आया था कि जब तक हम अनपढ़ रहेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती है। लेकिन हमारे समाज सुधारकों को ये महसूस हुआ कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, खेलों कूदों में भाग लेना, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और भी कई प्रकार की गतिविधियां हैं। अगर उनमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो उत्तम दर्जे का होगा। और ऐसा हुआ भी। और इसलिए 1844 में कॉलेजों और स्कूलों में जो है वो छुट्टी की व्यवस्था की गई और हर रविवार को छुट्टी के तौर पे मनाया जाने लगा था।
1: जी दोस्तों, तो जहाँ बच्चे, जैसे हम अगर बात करें ना कि अगर हम वीक में 7 डेज की बात करें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं 6 डेज वर्किंग रहते हैं, तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक जो है, जैसे भी 9 से अगर 3 बजे तक वो स्कूल में बिजी रहते हैं, तो वहाँ भी वो किताबों से उलझे रहते हैं। शाम को कुछ बच्चे ट्यूशंस में उलझे रहते हैं, तो उन्हें जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं
0: बिल्कुल
1: उसके लिए समय ही नहीं मिल पाता। तो ये एक ब्रेक इसलिए भी है कि बच्चे जो उनके अंदर एक टैलेंट है, जो काबिलियत है, स्किल्स है, उन्हें एनहांस करने का मौका मिलता है। वो जान पाते हैं कि वो किस किस फील्ड में जो है अपनी एक बेहतरी या एक अलग पहचान जो है वो बना सकते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका। और मजदूरों के लिए भी छुट्टी का जो था वो प्रावधान सन 1890 में हो गया था, क्योंकि जो ये मिल मजदूर हैं वो बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करते थे और सातों दिन, इवन इनको रात को भी ओवर टाइम भी करते थे ये, और इनको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता था और काम के बदले में उतनी पगार भी नहीं मिलती थी, उतना मेहनताना भी नहीं मिलता था जितनी वो मेहनत करते थे। तो इसमें जो हमारे समाज सुधारक और श्रम नेता नारायण मेघाजी लोखंडे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मजदूरों के लिए भी साप्ताहिक छुट्टी का जो है वो प्रावधान करने के लिए काफी संघर्ष किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कई सारे अभियान छेड़े। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के ध्यान में ये आया कि नहीं, मजदूर भी छुट्टी के हकदार हैं और उनको भी छुट्टी मिलना बहुत जरूरी है। तो फिर इन्हीं के प्रयासों के कारण 10 जून 1890 को जो है वो रविवार का दिन छुट्टी का घोषित हो गया था।
1: जी रुमा जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। मजदूर वर्ग की आपने बात की है
0: जी,
1: तो अक्सर क्या होता है कि चाहे उच्च वर्ग के लोग हैं, चाहे ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, है ना, हम एक श्रेणियां मतलब बांट देते हैं, श्रेणी में बांट देते हैं सभी लोगों को, या यूं कहें कि मतभेद करने के उसमें जब हम आ जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं हूँ या आप हैं तो हम भी कहीं काम करने ही जा रहे हैं, हम भी एक तरह से मजदूर हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक टैग लगा देते हैं कि जो एक ऑफिस फील्ड में या एक शॉप में या कहीं भी जा रहे हैं तो वो एक हाई लेवल के हो जाते हैं, लेकिन जो घरों में काम करते हैं उन्हें हम एक बहुत ही मतलब लो वर्ग का समझने लग जाते हैं और उसी तरह से उनके साथ हम ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी के अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, जो कि उच्च वर्ग के लोग हैं, तो वहाँ उन लोगों के अधिकारों की हम बात करें तो वो किस तरह से अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं?
0: देखो रुचिका, अपने अधिकार के लिए हमें खुद ही आगे आना पड़ता है, खुद ही बोलना पड़ता है। और रही बात उच्च वर्ग के घरों में जो छोटे तबके के लोग काम कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उनकी छुट्टियों के संदर्भ में कि उनको भी छुट्टी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो ये जो नियोक्ता है, जो भी अपने घर में किसी को काम पे लगाता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने उस एम्प्लॉय को एक दिन की छुट्टी, और जितने भी हमारे त्योहार आते हैं उन पे भी वो उसके लिए छुट्टी का जो है व्यवस्था करे। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे घर में काम कर रहा है उसकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको वो भी निभानी है। तो इसीलिए रविवार की छुट्टी का जो प्रावधान था विशेष तौर पे किया गया था कि हर एक तबका जो है वो छुट्टी का आनंद ले सके, अपने परिवार के साथ समय बिता सके। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी दूसरे के अधिकार में हनन ना करें, किसी दूसरे के अधिकार के ऊपर उंगली ना उठाएं, किसी दूसरे के अधिकार को हम रोके ना, और उसको भी पूरा मौका दें जैसे हम अपना जीवन एंजॉय कर रहे हैं वैसे वो भी अपना वो जीवन एंजॉय करता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे श्रम कानून है उनमें छुट्टी का प्रावधान है, और अगर कोई व्यक्ति आपकी छुट्टी के ऊपर वैन लगा देता है, आपको रोकता है, तो आप न्यायालय का दरवाजा उठा सकते हैं, आप लेबर इंस्पेक्टर के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अभी आपने देखा कुछ साल पहले हमारा मैटरनिटी लीव एक्ट जो था वो भी उसमें भी संशोधन किया गया, अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6 महीने की जो है वैतनिक छुट्टी दी जाती है। तो इसमें इसी एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जो महिला किसी के घर में काम करती है, साफ सफाई का या कुछ भी काम करती है, घरेलू नौकर है, अगर उसे भी मैटरनिटी लीव पे जाना है तो नियोक्ता जो है जिस भी घर में वो काम कर रही है उनका फर्ज बनता है वो उसको वैतनिक लीव पे भेजें, उसको भी 6 महीने की छुट्टी का जो है अब प्रावधान है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि केयर तो हर किसी को एक जैसी चाहिए होती है ना, अपनी जो सेहत का ध्यान है वो इसीलिए रखना, मतलब रखना बहुत जरूरी होता है, और खास करके उन गर्भावस्था के दौरान।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों, ये क्योंकि कई बार हम ना इस अकड़ में आके, ईगो में आकर ना बहुत सारी चीजें कर जाते हैं कि हम खुद तो छुट्टी मनाते हैं लेकिन जो हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं हम उन्हें छोटा वर्ग का कह के ये कह देते हैं कि इन्हें तो जरूरत है पैसों की, ये जितना काम कर सकते हैं करें, इनको छुट्टी की क्या ही जरूरत है।
0: देखो रुचिका, आपकी बात से मैं एक बात ध्यान में आई कि हम आजाद भारत में रहते हैं लेकिन अभी भी हमारा एक तबका जो है वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है, चाहे उसकी वो मजबूरी है, गरीबी के कारण रह रहा है या किसी भी और वजह से रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका शोषण अभी भी हो रहा है। और देखो साप्ताहिक जो हमारी अवकाश होता है अधिनियम 1942 में बना था, वीकली हॉलीडे एक्ट, उसमें हर व्यक्ति को सप्ताह में एक बार छुट्टी का प्रावधान है।
1: जी बिल्कुल, तो रूमा जी इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि हमें फिर से एक ब्रेक की जरूरत है, एक प्यारे से गीत की जरूरत है। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, और उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ।

0: तो रुचिका, बहुत ही प्यारे से गीत के साथ हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और हमारी हौसलों को उड़ान मिलती है हमारे दोस्तों के सहयोग से और प्यारे प्यारे गीतों से
1: जी, और प्यारी प्यारी सी जानकारियों से।
0: बिल्कुल
1: जी, जब ये जानकारियां हम अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं ना, और उनकी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, वो तो आप जानते होंगे अच्छी लगती हैं या नहीं।
0: हाँ, नहीं, हमारे दोस्त हमें बताएंगे इस बारे में। हम तो कहते हैं इनसे कि हमें बताया करें, हमें अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि ये साप्ताहिक छुट्टी जो हम रविवार को सभी मनाते हैं, या कुछ का अलग अलग सिस्टम रहता है, लेकिन हाँ वीकली एक छुट्टी तो हर कोई जरूर अपने शरीर को भी रेस्ट देते हैं, अपने माइंड को भी रेस्ट देते हैं। तो रूमा जी, जैसे कि ऑफिशियली हम बात करें ना, तो वो तो मान लिया कि एक फिक्स्ड हो गया सभी का कि नहीं संडे को छुट्टी है।
0: जी जी।
1: लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि मार्केट में जाएं, तो कोई रेडी फड़ी वाले होते हैं या शॉप्स वाले होते हैं, तो कहीं कहीं तो फिक्स रहता है कि नहीं इस दिन जो है पूरी मार्केट बंद रहेगी, लेकिन कहीं कहीं उस दिन को ये फिक्स्ड होने के अलावा भी कुछ लोग जो है वो अपनी उस मतलब कि रूटीन में चलते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: रुचिका जी, श्रम कानूनों के तहत हर एक व्यक्ति के लिए छुट्टी का प्रावधान है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मालिक है, या उसमें काम करने वाले छोटे मोटे वर्कर हैं, सभी के लिए छुट्टी का प्रावधान है। और फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट में दफ्तरों और दुकानों के लिए के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहां पर भी ये एक्ट जो है वो लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि दुकानदारों को या फिर रेड़ी फड़ी वालों को छुट्टी नहीं होती है, हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब के साथ जो है वो इस छुट्टी का आनंद लेता है और लेते भी हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हम जो वर्किंग लोग हैं वो संडे की छुट्टी होती है तो शॉपिंग भी उसी दिन करने जाते हैं, तो उस हिसाब से एरिया वाइज जो है वो कुछ संस्थान जो है, प्रतिष्ठान जो है वो खुले रहते हैं। और यहाँ पर भी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी सप्ताह में एक बार छुट्टी होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है, चाहे कोई भी दिन फिक्स कर लिया जाए। क्योंकि देखो रुचिका, अगर हम संडे को छुट्टी करते हैं तो हम रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए बाजार संडे ही जाएंगे, तो जो वहां पे व्यक्ति काम कर रहा है उस प्रतिष्ठान में या दुकान में या रेड़ी फड़ी वाले जो है, उनको किसी और दिन रोटेशन के हिसाब से जो है वो छुट्टियां दी जाती हैं। और किसी किसी मार्केट में आपने देखा होगा, कोई मार्केट बुधवार को बंद रहती है, कोई मार्केट वीरवार को बंद है, कहीं पे मंडे को मार्केट ऑफ रहती है। तो ये चीजें निर्धारित करता है वहां का स्थानीय प्रशासन, चाहे वो पंचायत है या फिर आपका DC ऑफिस है या फिर जो भी आपका ब्लॉक एरिया है, या फिर वहां का जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोग निर्धारित करते हैं कि इस एरिया की जो दुकानें हैं या जो प्रतिष्ठान है वो कब बंद रहेंगे, रेड़ी फड़ी वाले किस दिन छुट्टी करेंगे। तो छुट्टी का प्रावधान जो है कानून के तहत सभी के लिए है, और यदि कोई व्यक्ति आपके इस हक में, आपके इस अधिकार में खलल डालता है, तो आप इसकी शिकायत, मैंने पहले भी कहा कि आप अपने स्थानीय जो आपका लेबर इंस्पेक्टर है उसके पास जाके आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। और अगर आप छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं और उसके एवज में आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, उस दिन की दिहाड़ी नहीं दी जाती है, तो उसके लिए भी आप कोर्ट का जो है दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे प्रावधान है, जो हमारा छोटा तबका है जो सोचता है कि हमारे लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, तो ये गलत बात है। कानून सबके लिए है, और हमने पहले भी कई बार बात की, समानता के अधिकार की बात की है, हमारा संविधान ये कहता है, तो यहाँ कानून की नजर में हर एक व्यक्ति

0: बराबर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, किसी प्रतिष्ठान का मालिक है या किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाला छोटा नौकर है। छुट्टी तो सभी को मिलती है और मिलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, जितनी भी हमने बातचीत की और खास करके एक साप्ताहिक छुट्टी की बात की है हमने, तो मैक्सिमम हर एक फील्ड में जो है जो पॉसिबिलिटी है वो रहती ही रहती है, लेकिन एक ही ऐसी फील्ड है जहाँ थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं, और वो मैंने पहले भी कहा कि एक गृहिणी की हम बात करें, तो जो भी कोई महिला है जो किसी के घर में खाना बनाने जाती है
0: जी।
1: तो वहाँ अब खाना तो हर दिन खाना है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वहाँ जो कुछ लोग होते हैं जो वो ये बात शायद नहीं समझते हैं, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि खाना एक दिन वो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलकर जो है बना ले, तो उन्हें भी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी जो उनके घर पे काम करने आते हैं, खाना बनाने आते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका। और एक ना इसी कड़ी में एक गीत याद आ रहा था मुझे, पैगाम फिल्म का, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ऐसा ही हम पैगाम आपको देना चाहते हैं कि दोस्तों, आपके आसपास जो भी व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा है या आपकी दुकान पे काम कर रहा है, जैसा भी है, वो अपनी मेहनत आपको दे रहा है, आपके काम में आपकी अपनी मदद आपकी मदद कर रहा है, तो उसको भी छुट्टी जरूर दें। उसे ये कहकर कि दुकान में या छोटे प्रतिष्ठान में छुट्टी नहीं होती है, या घर का काम करने वालों को या मजदूरी करने वालों को छुट्टी नहीं होती है, इस बात को अपने दिमाग से निकालें। और इन लोगों को भी जीने का हक है, इनको भी छुट्टी इंजॉय करने का हक है, ये भी संडे का दिन अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये छोटा तबका भी अब प्रयास कर सकता है, और उसके लिए उनको समय की जरूरत है, तो ये समय आप उनको जरूर दें। छुट्टी का हक उनका जो है वो आप उनको जरूर दें।
1: जी बिल्कुल दोस्तों। तो जो भी आपके साथ जुड़ते हैं लोग, जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एक दूसरा घर समझकर जो है हम वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उसी तरह से जो लोग आपके घर में चाहे गार्डनिंग का काम करते हैं, चाहे वो किचन का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से जो है वो काम करते हैं, तो वो भी एक तरह से अगर लॉन्ग टाइम से आपके साथ जुड़े हैं तो वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करते हैं दिन रात, जितना शायद वो अपने घर में भी नहीं करते होंगे उससे कहीं ज्यादा वो आपके लिए करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लें, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आप इंसान हैं वैसे वो भी इंसान है, उनका शरीर भी रेस्ट मांगता है, उनका शरीर भी थोड़ा रिलैक्स होने का मन जो है उनका जरूर करता है अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो घूमें फिरें चाहे वो पूरा दिन सो के रेस्ट करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, और रूमा जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत भी बता दिया है, तो जाते जाते आप सभी को ये गीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है इस छुट्टी के रिगार्डिंग, या कोई भी और आपके मन में सवाल चल रहे हैं, या आपको लगता है कि इस बारे में बात नहीं हुई और होनी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
0: 9418431223। आप कभी भी इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप किसी और खास विषय पे बात करना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में भी आप हमें अवगत करवा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो रूमा जी एक बार जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
0: दोस्तों मैं व्यवसाय से तो मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन पिछले 12 सालों से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में मैं एज अ लीगल प्रोफेशन ऑफिसर काम कर रही हूँ, और कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को सचेत करना, उनको जानकारियां देना, उनकी ज्ञान में वृद्धि करना, ये मेरी ड्यूटी है, और मैं यहाँ पर भी इसी अपने कर्तव्य की वहन के लिए आती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जितनी जानकारियां हमारे दोस्तों तक पहुंचे उतनी ही कम है, क्योंकि आजकल के समय में जानकारी के अभाव में किसी भी काम को कर पाना बहुत मुश्किल है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे समाज में बनी हुई हैं, उन सभी परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें अपने अधिकारों का जो है वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं रुचिका के साथ यहाँ पे आपके साथ मिलके बांटती हूँ जो भी जानकारी कानून से संबंधित हमारे पास होती है वही साझा करती हूँ दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और दीजिए हमारे हौसलों को पंख ताकि हम भी नाप सकें ये ऊंचा सा आसमान।
1: जी दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ये
0: तो याद रहेगा ना। गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान गए जवाब।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका।

कार्यक्रम जी हाँ श्रोताओ आओ सुनते ने कार्यक्रम का सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: बिजली बचाओ देश बनाओ। वही अपनी बैटल फील्ड है तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों छेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: कानून दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो सारी ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा दे उन्हें इन तशो तो अपना कामकार भी जरूर जेड़ा से करा कने इस कार्यक्रम दे सफर कने भी जुड़िया क्योंकि सफर तो तक रहा है दो ते तीन बजे तक ता जरूर हाँ पहले तो अपने कार्यक्रम दे सफर दा आगाज करते हैं ना क्योंकि आगाज जेड़ा से अगर अहाँ करेंगे ना तो कार्यक्रम का जेड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। पर आगाज करने से पहले जेड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाएंगे ना स्टूडियो का जेड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाते ना फिर ही जेड़ा से कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से करते हैं तो शो तो नंबर है 701-8117091 तो ये नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने इसी कने अहां दे पहले जेड़ा श्रोता न तिना कने भी करी लैंदे न गलबात से कुथु ते बोला दे न कने तिना दा ना के हेलो
1: नमस्कार मंडी
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: ठीक है मैडम
0: जी ठीक ठाक है जी स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च
1: धन्यवाद मैडम धन्यवाद
0: जी तुम्हारे तो ते बोला दे कने तुम्हारा ना क्या है जी
1: एक्सेस बड़ी जगह अशोक कुमार
0: जी ता अशोक जी क्या आज तुम्हारा काम काल लगे या क्या करा दे आज तुम्हारा
1: आज मैडम घरे सफाइयां लगाईया
0: जी अच्छा आज घरे दिया सफाइयां लगाईया
1: ਕਿ ਰਾਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਰਾਤੀ ਜਾਨਵਰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ
0: ਜੀ
1: ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ
0: ਜੀ ਘਰੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ
0: ਜੀ
1: ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੰਡੂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਸੇ ਆਹਾਂ करनी है कने क्योंकि कोई ना कोई गलबात जालू निकली करी सामने आती है तो अहां जो भी लगता है कि नहीं इस पर गलबात करना जरूरी है ना जी क्योंकि घरे दी साफ सफाई यहाँ कर देना अपने आसपास जड़ाई से साफ सफाई करके रख देना तो थोड़ा डर जड़ा है से कम हो जाता है कने अहां जो पता होंगे कि अहां साफ सफाई की हो तो ਜਿਹੜਾ ਜੀਜੂ ਕੰਡੂ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਔਰ ਨੋਇਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਨੋਇਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਤਾ ਕਿ ਬਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਰੀਆ जी इस वरी बरसात थोड़ी काटी है ना जी
1: जी जी जी जी
0: जी जी
1: इसे अच्छा ढूंढ रहा है
0: जी जी ता अशोक जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: हाँ पहले सुनना पमी ठाकुर ला
0: जी
1: पमी ना जगह या बंदा फिर सुन गया वो तो प्रदेश में सुन रहा
0: जी जरूर है कि तो तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद मनी
0: जी ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दा आगाज कर देना तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो तो शशि कन्ने। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने गल बात करी सकते, कन्ने अहां कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने जेड़ा तुहां दियां प्यारियां प्यारियां फरमाइशां न सभी सुनी सकते। गल बात अहां करनी है कि घरे दी साफ सफाई करना कितना ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो हर दिन अहां घरे दी साफ सफाई करते न, जेड़ा दिने दी शुरुआत है टाइम टेबल अनुसार अहां अपने जितने भी काम मन से करते न, पर समय दे अनुसार हर काम करना जरूरी है, क्योंकि घरे दी साफ सफाई करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। कन्ने एक जेड़ा श्रोता जुड़े थे तिना भी यही बोलिया था कि घरे दी साफ सफाई करना जरूरी है। वैसे भी बरसात का मौसम चलिया तो बरसात के मौसम च हर जगह साफ सफाई होना जरूरी है, चाहे स्याहां दियां नालियां न, चाहे स्याहां दा घर है, चाहे स्याहां दा मोहल्ला है, हर जगह साफ सफाई होना ज़्यादा जरूरी है। इदे उपर यहाँ गलबात करनी है, इसी गलबात कन्ने यहाँ आगे भी बढ़ना है, कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है। तुहां सारे भी इसा प्यारी दी फरमाइश है जो इंजॉय करा, कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: 91.2 MHz पर AI दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तोहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने ते श्रोताओ कार्यक्रम जहाँ गलबात करा देन कि घरे दी साफ सफाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात का मौसम है, हर चीज़ का ध्यान रखना अहां दा काम है, क्योंकि कोई भी अहां काम कर देन तो सोच विचार जिहड़ा से ज़रूर कर देन। कने बरसात का मौसम है, कुछ ना कुछ सिलन नमी जिहड़ा से तीजो दूर करने वास्ते अहां ज़रूर घरे दी साफ सफाई कर देन। कने ज़रूर अहां साफ सफाई कर देन ताई अहां अपने घरे जो भी साफ सुथरा रखी पाते न, कने जिहड़ा जीजू कंडू हैं तिना दा भी डर जिहड़ा से बिल्कुल नहीं रहिंदा है। तो श्रोताओ ज़्यादातर अहां गल करिए तां जिहड़ा कीड़े मकौड़े न तिना ते अहां अपना जिहड़ा बचाव है से किस तरीके ने करी सकते। मच्छरदानी जिहड़ा से अहां लगाई सकते, कने अपने घरे दी जिहड़ा साफ सफाई है से प्रोपर तरीके ने करी सकते। कने कोई भी काम है अगर अहां घरे दी साफ सफाई करते न या थोड़ा दिया समय अहां अपने घर जो दिन दे न या घरे दी साफ सफाई करते न तो अहां जेड़ा भी कीड़े मकोड़े न तिना ते राहत पाई पाते न, कने थोड़ा डर जेड़ा है से भी कम हो जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना या दरवाज़ा जेड़ा से प्रॉपर तरीके ने बंद करके रखने, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो ज़रूर अहां इहदे उपर गलबात करनी है, कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकते। इसी सफर जो अहां अगे बढ़ाने है, कने गल अगर अहां करिए सवर दी तो श्रोतो जिंदगी च सवर जेड़े से करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी च जालू अहां दी जिंदगी जेड़े से धीरे धीरे चलती है, कने अहां ते सवर करवांदी है तो कुछ ना कुछ अहां जो समझ आउंदा है। पर अहां कोई भी काम करते न जल्दी जल्दी, हर काम जो अहां जल्दी जल्दी करने दे चक्कर च कुछ ना कुछ इस काम जो गलत भी करी दे न। चाहे से रिश्तियां च सवर करना बिल्कुल सवर जेड़े से नहीं है, सहन शक्ति जेड़े से बिल्कुल नहीं है, सोच विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो सोच विचार होना भी ज़रूरी है। अहां कुछ सोच दे न, कुछ भी सोचा दे न, ज़रूर सोची समझी करी अगर अहां बोल दे न तो बड़ी अच्छी गल है। अहां दे ये शब्द जिहड़ा न से कुछ ही ना कुछ अहां जो जिहड़ा अहां दे शब्द न अगर अहां अच्छे शब्द बोलते न तो अहां दा जिहड़ा व्यवहार है से ठीक है, कि अहां अच्छा व्यवहार रखा दे न तो बड़ी अच्छी गल है। कने अगर अहां कुछ ना नकारात्मक शब्द जिहड़ा न तिना दा उपयोग करा दे न तो से कुछ ना कुछ अगले व्यक्ति जो भी ठेस जिहड़ा से ज़रूर पहुँचाते न, तो हमेशा अच्छा बोला। कने इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी ज़रूर अगे बढ़ाना है, पर अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने करदे न गल बात। तो श्रोताओ अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने करनी है गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद मैडम जी, ठीक ठाक मैडम जी, तुसा ठीक ठाक मैडम जी?
0: जी अहां भी ठीक ठाक हैं जी। सुनील जी कोठिया जलोट ते बोला दे ना जी।
1: हां जी मैडम जी।
0: जी
1: चलो ठीक ठाक ही रहना चाहिए मैडम जी सारे।
0: जी तो सुनील जी आज अहां गल बात करा दे ना, अगर तुहां कार्यक्रम शुरू ते सुना देंगे तो तुहां सुनी ली होनी है।
1: हां जी साफ सफाई दे ऊपर मैडम
0: जी, तो तुहें क्या लगता बरसात दे मौसम च घरे दी साफ सफाई तो वैसे हां हमेशा करते ही हैं, पर बरसात दे मौसम च कितनी क्या हां जो साफ सफाई करना चाहिए दी?
1: बड़ा ध्यान रखना पौंदा मैडम जी, जित्थू लगदा कोई बोंच है मैडम जी, गाय है, जित्थू मतलब साफ करना चाहिए मैडम। चलो घरे तो मैडम जी साफ सफाई तो होंदी रहिंदी।

तो श्रोता तुम सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश हाँ जो आई हुए सुनील जी दी कने से रहने वाले न कोठियाँ चलोट ते तीन तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने फिर ते हाँ वापिस आई हूँ अपने सफर च गलबात करना कने तुह सारे भी मेरी गलबात शो भी सुना देने न कने जेड़ा गीत संगीत है तुहदिया जेड़ा फरमाइशा न तिना भी इंजॉय करा देने न तो श्रोतो खुश रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहने वास्ते अहाँ कोई मौका ढूंढते न या कल का इंतज़ार करते न तहाँ जेड़े से इंतज़ार ही करते रहते न। अगर अहाँ जो लगा दा है कि अहाँ खुश रहना है तो सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जालू अहाँ जो खुश रहने का मौका मिलता है ना तालू अहाँ खुश रहते न या अहाँ खुश होई करी कुथी ना कुथी अहाँ आजकना जेड़ा दिन है आजकने दिन अहाँ क्या खुशी महसूस की है या कुंडिया दिन अहाँ वास्ते खुशी आला है। खुशी जेड़े से ढूंढने ते नहीं मिलती। जालू अहाँ खुश रहना शुरू करी देन या खुद जो खुश रखना शुरू करी देन तो अहाँ खुशी जेड़े से अपने आप ही अपने च ढूंढी लेंदे न। तो इसी कन्ने तो हाँ फेसबुक लाइव भी अहाँ जो दिखा देने न तो जितने भी लिसनर जेड़ा फेसबुक लाइव दिखा देन तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है तिना सारे दा ही कने नमस्ते है। तो हाँ सारे भी ठीक ठाक होने न कने आज अहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन कि घरे दी साफ सफाई करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बरसात दे मौसम च क्योंकि हर कोई चाहता है कि अहाँ अपने घरे दी साफ सफाई करना कने अहाँ दा जेड़ा घर है से साफ सुथरा रहे। इसी कन्ने अगर अहाँ गल करिए तां कई बार होंदा ना कि गमलिया च पानी जेड़ा से रुकिया होंदा तां तिना गमलिया दा पानी जेड़ा से फेंकी सकदे कने इसी कन्ने या नालियां च पानी है उस जो भी साफ करी सकदे कने अगर कुछ यहाँ दी छत घरे दी छत है तिदी पर पानी रुकिया है तो उस जो भी यहाँ जेड़ा से साफ करी सकदे क्योंकि छोटी छोटी जेड़ा चीज़ा न तिना दा ध्यान रखना ज़रूरी है। जिन्हें तुह छोटे बच्चे का ध्यान रख दे उसी प्रकार अपने घर का ध्यान रखना भी जरूरी है। कने इसी कन्ने कपड़े कन्ने जेड़ा जूते न तिना दा ध्यान क्योंकि कई बार होंदा ना कि बरसात के मौसम च हाँ गिले कपड़े पहन देन तो कुथी ना कुथी अहाँ दा जेड़ा स्वास्थ्य है सभी अहाँ जो दस्तक देना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि है अहाँ जो दस्तक दे तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है से ज़रूर रखा। इसी कन्ने अहाँ भी तुहां दा ख्याल रख दे न कने तुहां भी जेड़े से अपना ख्याल रखा कने इंदु जी ने जेड़े से अहाँ जो फेसबुक लाइव च मैसेज किया है तो हाँ भी इस कार्यक्रम के सफर च जेड़ा तुहनिया फरमाइशा न से जरूर सुनी सकते क्योंकि फरमाइशी कार्यक्रम में कने जेड़ा टॉपिक है से तो सारे ही सुनी लिया। तो इसी कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम के सफर जो भी आगे बढ़ाना है क्योंकि सफर च जालू गीत संगीत अहाँ की गलबात कने जुड़ी आता है तो ये सफर और भी प्यारा लगता है। दर्शो तो इस सफ़र जो और भी प्यारा बढ़ाते न कने तो हाँ सारे भी जल्दी जल्दी अपनी अपनी जेड़ा फरमाइशा न से भेजी दिया या कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो चल दे न सुन दे निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला तुहा सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश फिर त्यहाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर तशु तो जानकारी जिड़े से जरूर तुहा तक पहुँचा देन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जिड़े से शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से जिड़ा दिव्यांग हैं तिना वास्ते दिव्यांग जिड़ा वर्ग दे विद्यार्थियों वास्ते जिड़ा कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक हैं तिना वास्ते बहत्तर जिड़ा पद हैं भरने वास्ते जिड़ा आवेदन है से आमंत्रित किया है तो इसी कन्ने जिड़ा इच्छुक पात्र अभ्यर्थी है से 22 अगस्त तक जिड़े से आवेदन जरूर जिड़े से करी सकते हैं तशो तो ये जानकारी तुहां तक पहुँचाई है कन्या जहाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन कि घरे की साफ सफाई करना कितना ज़्यादा जरूरी है गल हाँ की थी कि कपड़े कन्ने जुत्तियां दी जिड़ा देखभाल है सभी करना हाँ वास्ते जरूरी है जिड़ा कपड़े न तिना जो सुखाना या तिना जो धूप लगाना भी यहाँ वास्ते जरूरी है क्योंकि तिना जो धूप लगाते न बरसात के मौसम च वैसे भी जिड़ा बदबू ऐसे आना शुरू आई जाती तो इससे अच्छा अगर हाँ तिना जो धूप लगाते न तो ही वास्ते अच्छा है तेरे जिड़ा जूते न तिना का ध्यान भी रखना जरूरी है वैसे तो बरसात के मौसम च ज़्यादातर चप्पल का ही यूज़ जिड़ा इसे हाँ जो करना चाहिए कने घर की जिड़ा सफाई है हर जगह जिड़े से यहाँ जो करना चाहिए ज़्यादा ज़रूरी है ना क्योंकि बरसात के मौसम च जिड़ा कीड़े मकोड़े न तिना दा सबसे ज़्यादा डर रहिंदा कने सीलन कने नमी दा भी जिड़ा डर है से ज़्यादा रहिंदा तो अपना जिड़ा ख्याल है से तो तुहां रखना ही है कने अपने घर दा जिड़ा ख्याल है सभी ज़रूर रखना है कने यहाँ भी तुहां दा ख्याल रखना है कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते ना।

0: श्रोता तो सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अगले जिड़ा श्रोता ने सहा करने जुड़ चुके न कने सी करने तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश तो जरूर ये गीत फरमाइश अह तक पहुँची हुए इंदू जी दी कने से रहने वाले न सीतबाड़ी ते। हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: जी। जी
0: जी
1: जी
0: हां जी ठीक ठाक हैं जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा ना के है जी?
1: हां जी मैं सबोड़ा ते बोला दी माया
0: जी, सुकड़े ते बोला दे माया जी।
1: हां जी
0: जी, ता माया जी क्या कामकार तुहां लगया कने आज जीड़ा जी?
1: कोई काम कार नहीं
0: है जी,
1: खाने पीने का काम कार
0: जी। गल बात हां करा दे ना, आज घरे दी साफ सफाई करना कितना ज्यादा जरूरी है ना जी, बरसात दे मौसम च
1: प्रोग्राम सुन लगी पोंदा, प्रोग्राम मैं सुन ही लंदी
0: जी।
1: फिर मैं सब फोन कर लंदी, प्रोग्राम तो सुन दी रहंदी पर
0: जी। अच्छा प्रोग्राम सुन दे ही रहंदे रोज जी? जरूर अपने कार्यक्रम सफर जो अगे बढ़ाने कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ

कन्ने जुड़ी सकते कन्या हा कन्ने गल बात जड़े से जरूर करी सकते। तो शो तो जिंदगी है, जिंदगी च हर चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी छोटी जड़ा गल्ला न तिना दा हाँ ध्यान रखते न ताई यहाँ अपनी जिंदगी जो बेहतर बनाई पाते न कने अपना जड़ा ख्याल है से रखी पाते न। इसी ख्याल कन्ने अहां तुहां दा भी ख्याल जड़ा है से रखना है क्योंकि तुहां भी जरूर अपनी फरमाइशां याद करते न कि कलू दिया तुहांदी जड़ा फरमाइश है से अहां तुहां तक पहुँचाते न। तो अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न तुहां सारे भी इंजॉय करा।

कानून दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शकों तुहां सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत दी फरमाइश हां जो आयो वे नरवाणा ते कने तिना दा ना वे मुस्कान जी, तो जरूर तिना तक कहां ये गीत पहुंचाया कने तुहां सारियां भी इंजॉय कीता। इसी कन्नै अगली जेह्ड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न, क्योंकि कार्यक्रम च जेह्ड़ा समय है से थोड़ा देर ही है कने इस कार्यक्रम दा जेह्ड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कने तुहां तक पहुँचांदे न ए प्यारी दी फरमाइश।

धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने गलबात करा दे थे कि घरे की साफ सफाई करना हाँ वास्ते कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो जितने भी श्रोता ना से सारे समय

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए फिर।
1: ओ यस यस, हां सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों छेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर्रो रहा हूँ सचिन कपूर हाजिरा कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा लेकर ता ठीक ठाक राजी बाजे उम्मीद करनो सब ठीक बुने हैं और तो सब ठीक ही बुने ऑलमोस्ट खुश बुने हैं श्रोताओं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। ता चलिए श्रोताओं सब पहले था धर्मशाला रहा मौसम दे अपडेट कैसे हो तो सो गया है साझा करते हैं। इस समय रे गल करिए श्रोताओं है था इस समय किया सो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो तापमान है श्रोताओं। और अगर हूँ नमी रे गल करूँ श्रोताओं नमी किया सो लगभग 71% किया सो नमी इस समय श्रोताओं। तो यह धर्मशाला रा मौसम रे अपडेट श्रोताओं। कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता सो के जुड़ सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7081889 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिर हूँ शेयर करनो तो हो गए 7081889 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी अगो की साझा कर सकते हैं श्रोतों। तैयार जी कार्यक्रम पर आगाज कर लेते हैं इस गीत हो गए और फिर तथों बात उनसे भी फरमाइश और अन्य जानकारी

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हवेरी गुंजन मंच तो सब कैन सो आप बन रहे हैं और बिखरे भी हूँ कर देने हवेरी गुंजन और सचिन कपूरा बहुत सारी अन्य जानकारी कैन सो तुझ हो गया सु शेयर करनी साझा करनी हैं और इसी सो के शो तो आसू भी तुझ हो गए कुछ एक जानकारी कैन सो साझा करनी हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं शोतों और कुछ एक जानकारी के अनुसार तो सो गया है साझा कर दे हैं शो तो शो तो अभी हिमाचल में तू पता कि हिमाचल में वर्ष 2050 तक के सो लगभग अधे ग्लेशियर समाप्त होने का खतरा हा शो तो लगातार बढ़ कर दा तापमान सर्दी घटो कर दे बर्फबारी और बिगड़ता हाइड्रो क्लाइमेट चक्र तेरी मुख्य वजह हा शतों और हिमाचल प्रदेश माँ के शतों सो ये हिमाचल प्रदेश अध्ययन माँ ये चेतावनी दे गई हा यदि संतुलित विकास और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण ना भुआ तो ग्लेशियर व शवन और तेज बुचगाना और तेरा असर हिमाचल सो के पंजाब और हरियाणा वे जल सुरक्षा पर भी किया सो पैना हा शतों। चलिए जानकारी रहा पिटा रही है चलते हुए ना श्रोता तो सब बन रहे ने समय आज से सचिन कपूर सो की और इंदी अपनी गप्पा जो तो है सब हूँ कर दें। बहरहाल इंदे श्रोतागण के सोच होगी कनेक्ट बुझ गए बिल्कुल है इन कनेक्ट। हाँ जी बिल्कुल कनेक्ट कर दें जी तुसो इंदक श्रोतागण सो असोगी लगे भुना कनेक्ट और श्रोतों तो ऐसा भूण कर देने इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और तो ऐसा बिकी असो जरूर होगी जुड़ी सकते हैं। जुड़ने वास्ते कॉल करने वास्ते नंबर आऊँ साझा करी 9 7 0 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मुके फिरे 7 0 8 8 7 0 9 8 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी है वो कि साझा कर सकते हैं। गल खास ख्याल रहे श्रोताओं जानकारी की सो रेडियो मंच दस लाइक जनाब जरूर भुआ। बहरहाल चलते रहते श्रोतागण अस हो गए कनेक्ट हुए हैं पूछ दिन कौन बल्लू कर दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन तो सब बन रहे अपने वीडियो दोस्त सचिन कपूर सो गए आइए लेकर चल दे श्रोता तू सभी जो रूब रू कर पहले श्रोता सो गए। नमस्ते जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी नमस्कार जी
0: जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं
1: चातुड़ू से बोल रहे
0: हैं अच्छा चातुड़ू थों कौन बोल रहे हैं जी
1: मंगल
0: अच्छा और मंगल जी
1: जी जी बढ़िया
0: क्या हाल चाल कोई नोई ताजी तुम दे चातुड़ूरी
1: चातुड़ूरी नोई ताजी नहीं है
0: कोई नोई ताजी नहीं चातुड़ूरी
1: नहीं है यहाँ और हम कहीं यहाँ डर जगराते कर रहे हैं लगड़ा पता चातुड़ू जाएगी
0: अच्छा चलिए ठीक है
1: कल लेते काम बंद हो गई ना।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: हाँ जी
0: अच्छा मंगल जी ता क्या फरमाइश लेकर आए नाज तो है
1: शांत
0: भारद्वाज रा नवा गीत
1: मेरे के लंगा हेलो
0: मेरे या के लंगा
1: कुबती ता डेरा लायो
0: अच्छा
1: हां जी
0: चलिए ठीक
1: बड़ा प्यारा गाना है
0: ठीक है जी जरूर होना ले तो स्विस गीत है जो
1: ठीक है महाराज
0: धन्यवाद। तो श्रोताओं तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो गिंदे और भी श्रोता आसू कॉल करू कर दें तो है भी करी सकते हैं कॉल 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर। बहरहाल अगले श्रोता जो कर दें तुसु सब भी सो गी कनेक्ट। नमस्ते जी
2: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन
2: आऊं कंडी बोलूंगी जीनत
0: जीनत ना तुंदा क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही यूनिक नेम है, यूनिक ना जीनत। जीनत जी क्या कर दें तो है का स्कूल है या कॉलेज करी पढ़ दें।
2: आऊं इग्नोरे थ्रू बीए करूंगी या फिर आऊं जॉब भी करूंगी सोगी डेंटल क्लिनिक अंदर
0: क्या बात है, कड़ी कड़ी जॉब करू कर दें तो है।
2: धर्मशाला ओल्ड चड़ी रोड।
0: अच्छा
2: हां जी,
0: चलिए चलिए जीनत जी अपने बारे में दसा थोड़ा करे
2: अपने बारे में क्या
0: तो है अपना कजो की जॉब भी करू कर दे और सोगी सोगी तो इधर
2: दस।
0: सोगी स्टडी भी करू कर देता के धोनी चीज़ जो तो है चलाई पंदेन के करी चीज़ के सो मैनेज बुंदीन तुंदी लाइफ में स्टडी भी और जॉब भी फिर घर का काम भी
2: हाँ जी हाँ जी,
0: ता के।
2: वाह चलिया, मेरा पेपर भी लग रहा ना
0: हाँ जी
2: कॉलेज रहे, तब
0: जी
2: चौ बजे उठ भी आऊं,
0: क्या बात है,
2: फिर 7 बजे मम्मी उठी बंदा, फिर घर काम करना, फिर कॉलेज जाना, फिर जिन पेपर होते तो गांव छुट्टी कर दिया, पर यहां रेगुलर ही गंदी कम हो ही ना अपने।
0: अच्छा
2: हाँ जी, बाकी तने भी जाने तड़ी लंच टाइम हुंदा, तने भी पढ़ाई कर दिया।
0: क्या बात है जीनत, इग्नोर थ्रू बीए करो कर दें तो है, क्या मेजर रुख रहे तो है क्या माइनर रुख रहा,
2: पब्लिक एड के सोशियोलॉजी
0: मेजर को नहीं थी में से पब्लिक एड या सोशियोलॉजी,
2: इतना पब्लिक एड
0: पब्लिक एड मेजर
2: मेजर था और
0: को।
2: माइनर सोशियोलॉजी।
0: अच्छा क्या बात है, और बड़े मुझे बड़े मतलब अच्छे, और एक गल न जाने कितने हजारों मनु होने की लख मनु होने या, लेकिन तो है बेगा 4 बजे के न सो उठे बंदे। अच्छा जीनत जी ये रोजाना तो है 4 बजे उठ देनी या फिर ये पेपर चल रहे ताए।
2: ना पेपर चल रहे ताई, पौने
0: अच्छा और रोजाना के तुंदा रूटीन रंदा रूटीन वर्क के रंदा रोजाना।
2: 6 बजे। हाँ
0: अच्छा
2: जी
0: चलिए ठीक है जीनत जी, कुंड ने गीत सुनना पसंद कर ले अपने वेड़ी गुंजन में।
2: बांध आया हो।
0: अच्छा
2: हाँ जी ठीक
0: चलिए ठीक है जी, धन्यवाद, जरूर
2: है,
0: सुनवा ले,
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद जीना जी। चलिए सो तुम कार्यक्रम जो आगो बढ़े तो सब बन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर सो गया, और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हुणु करदे हैं अपने अपने वीडियो सेट में। ताइए जी फरमाइश का दौर कर लें देन शुरू, और फरमाइश तो बाद सो तो अगली जानकारी तू हो गया है जरूर शेयर कर ले, साझा कर ले।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून गुन रहा और हिंदी अपनी गप्पा जो हूँ करते हैं और सचिन कपूर है शोतो लाइव कार्यक्रम इस समय चल रहा तो सब भी जुड़ सकते हैं अपनी आवाज़ जो वेडियो मंच किया सो हूँ आई सकते हैं और होने भी सकते हैं ता इति वास्ते तुसु कॉल करना पैणी 708-8-8-709 अक पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो तो वो कि 708-8-8-709 अक पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अब वो के साझा कर सकते हैं यह गल खास ख्याल रहेगी जानकारी किया सो साझा करने लायक श्रोताओं जरूर बुआ तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुए बलने की वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में 121वें स्थान पर किया सो पूजिगो थो जबकि वर्तमान सरकार रे प्रयास थो प्रदेश अब पंचमें स्थान पर किया सो चलिया तिन्या विश्वास व्यक्त करो आ कि इन्हें वाले समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में किया सो देश का नंबर अखवाज्य किया सो बढ़ना हा तिन्या भी बल्लो हा कि राज्य सरकार आधुनिक सुविधाओं से युक्त CBSE स्कूल स्थापित किया सो करो कर दिया तथा ततिमा शिक्षकों भी नियुक्ति भी किया सो भुचु कर दिया तिन्या भी बल्लो हा कि भविष्य में प्रदेश या प्रत्येक नागरिक जो किया इडिया भी शिक्षा व्यवस्था पर किया सो गर्व भूणा हा श्रोतों तो इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला श्रोताओं ये चलते रहना हाँ आइया अभी फरमाइश मा किया सोए गीत हूँ दिन बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर

0: बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर तो ऐसा भी एक ऐसा ट्यून कर रहा रेडियो गुंजन और हम सचिन कपूर हर्षोत्तम कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गेम से चल रही था। बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। आइए श्रोतम कार्यक्रम जो होगा बनते हैं और कार्यक्रम में जब अगली जानकारी होगी तो सो गया सो रूबरू कर बनते हैं श्रोतम। श्रोतम प्रदेश विश्वविद्यालय के ऐसो शिक्षण और शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों जो प्रोत्साहित करने वे उद्देश्य थो बेस्ट टीचर एंड रिसर्चर अवार्ड रे नामकरण आमंत्रित के न सो करे हैं। अधिसूचना रे अनुसार अगर हम गल करूँ तो इच्छुक शिक्षक अथवा संबंधित विभागीय अध्यक्ष आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेजा सहित 18 जुलाई जो कि ऐसो नामकरण डीन ऑफ स्टडीज़ कार्यालय में किया सो स्थापित अवार्ड नामकरण समिति रे माध्यम थो जमा कराई सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ये पुरस्कार तिन्या शिक्षकों जो प्रदान भूना है जिन्हें किया सो शिक्षण उत्कृष्टता शोध उपलब्धियों नवाचार और एकेडमिक सेवा वे क्षेत्र में किया सो उल्लेखनीय योगदान किया सो दिता था सो तिन्यों किया ये अवार्ड मिलना है तिन्या टीचरों किया ये अवार्ड के श्रोताओं सो मिलना है। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं और जानकारी रा पिटारा के श्रोताओं सो तो है हूँ करते हैं सचिन कपूर सो के इस नाचीस रे माध्यम थो और फेसबुक रे माध्यम थो भी तो है हेरू भी करते हैं और हूँ भी करते हैं और जाहिर दे गल हिंदी इंदा ही कर इंदा रेडियो इसी इससे ए तक हिंदी और तुंदी और अनेकों हजारों युवारी आवाज़ बन कर के ऐसो तुंदे घर है विराजमान है और हर एक जानकारी की ऐसो तुसु तक पहुँचंदा है। बहरहाल जानकारी रा सिलसिला पिटारा के ऐसो तो सो यहीं चलते रहना है तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के कॉल ज़रूर कर सकते हैं जनाब 7081 8179 पर इस नंबर मंच कॉल कर कर अपना पसंदीदा गीत किया सो तो है ज़रूर होने सकते हैं इन शोतों। बहरहाल इंद श्रोतगण असोगे के नमस्ते जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी
0: जी जनाब कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: हाँ जी सब ठीक है जी
0: हाँ जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: अच्छा जी कल गाना है शेर सिंह का
0: अच्छा
1: उठे जिंदड़िया के आगत पत गुरु बाजा
0: जनाब जनाब पहले मैं भजन मेरी आवाज छु कर दी तू सुद कर
1: हां जी
0: हेलो
1: ठीक है
0: माफ कर जी यारी आवाज की है सो अजू तक कनेक्ट ना बुचु कर दे हा ता असो डिस्कनेक्ट के सोइयो करना पे हुआ। बहरहाल कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं जानकारी रा सिलसिला पिटारा के ऐसो तो सो यहीं खोलते रहना लेके चलते तू सभी जो इस गीत तरीके ना

शोध एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊं सचिन कपूर रतन अपना हर से वीडियो जोकी तो कॉल कर सकते हैं जनाब 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिरे 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और वीडियो गुंजन रही गूंजों की तो सब इस समय बन रहे हैं और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा जो हुनु कर दे हैं कार्यक्रम में श्रोताओं इंदे श्रोता भी असू की जुड़ कर देन सोगी सोगी के आसो अपनी बोली में श्रोताओं जानकारी भी तो सुधक के आसो पूजू कर दी हैं रेडियो रे माध्यम तो और फेसबुक रे माध्यम तो भी और गीत संगीत दौर के आसो भी बिल्कुल बाखूबी चल रहा है इस समय तइए कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं चौथा और हेमा अगली जानकारी होगी तुसु रूबरू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने विशेष रूप थों किया सो दिव्यांग वर्ग रे अभ्यर्थी व्यवस्था किया श्रोताओं सो कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक व 72 पदा जो भरने व्यवस्था किया सो आवेदन आमंत्रित करो है श्रोताओं इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 22 अगस्त तक किया आवेदन कर सकते हैं निर्देशालय ने रिक्त पदोरा जिलावार रोस्टर तथा पात्र संबंधी विस्तृत निर्देश दिशा निर्देश के न सो भी के न सो जारी करी देते हैं श्रोतों तो जानकारी सिलसिला यही चलते रहना जानकारी रा पिटारे ही चलते रहना अगली जानकारी होगी भी तो सो किया श्रोतों सो रूबरू करवंदे हैं प्रदेश सरकार की सो हिमाचल प्रदेश की सब तो महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल 450 MW क्षमता वाली शंगाटोंगा कच्छम परियोजना जो लेकर के सो अपना रुख साफ करी दिता है श्रोतों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू है ऊर्जा विभाग रे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारी जो स्पष्ट करी दिता है कि किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर जो सतलुज नदी पर बनु कर दी है परियोजना जो किया यह परियोजना जो किया सो मार्च अप्रैल 2027 तक किया सो हर हाल में चालू कर दिया ऊर्जा क्षेत्र रे ऊर्जा क्षेत्र जो प्रदेश री अर्थव्यवस्था रीढ़ री हड्डी किया सो दस दहेन मुख्यमंत्री ये बल्लो हा कि शोंगाटोंगा कच्छम परियोजना हिमाचल री ऊर्जा क्षमता बढ़ाने सोगे सोगे सरकारी खजाने जो भी किया सो मजबूत करना है जैन ये परियोजना चालू हो चुकाने हाँ और मुख्यमंत्री रे आदेश ने कि मार्च अप्रैल 2027 तक किया सो हर हाल में ये परियोजना किया सो चालू होना चाहिए देहा श्रोतों परियोजना थों बिजली उत्पादन शुरू होने थों बाद ये सो प्रदेश जो हर वर्ष करीब 900 करोड़ रुपये रखिया ये अनुमान लाओ कर दें कि मुनाफा होना हाँ जत्थों विकास योजना जो नई रफ्तार किए श्रोतों सो मुलने हा फिलहाल है रफ्तार दे तुरे अपने कार्यक्रम जो और कार्यक्रम में जानकारी जो तो सब बन रहे समय सनाचीज सोगे आरजे सचिन कपूर सोगे और आया कार्यक्रम ही चलते रहना है शो तो बहरहाल कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो के सो बढ़न दे हिन और तू सब भी जो हुनंदे ने प्यार दे गीत तंदे वीडियो सेट मांगी तेरी फरमाइश है करमचंद जी जो कि नियर नोडरानी मंदिर रे निवासी हिन योल नोडरानी मंदिर रे निवासी हिन करमचंद री फरमाइश मां ए प्यार दे गीत

0: हेलो, हंसू की बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं इन शब्दों की था गीत ब्रॉडकास्ट करते करते यार कनेक्टिविटी की ऐसो भी जुड़ी गई है। बहरहाल कनेक्ट कर दें और पूछ दें कौन बलून दें और कड़ी थम बल्लू करते हैं। नमस्ते जी।
1: आसे बल्लूकान दे जाऊं सुरेश मास्टर बल्लूकान नो लॉन्च सा काम बरमावर तहसीलदार लॉन्च सा ग्रां टीडी था जी।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। भरमौर थो
1: हाँ
0: बलू
1: जी
0: कर देन तो है कुन
1: हाँ
0: देना
1: जी हाँ
0: करा
1: जी
0: दसो भरमौरा रा जी
1: उलॉन सा जी उलॉन सा
0: ओलोन सा।
1: हाँ जी हाँ
0: क्या
1: जी
0: बात है, क्या खासियत है इस गरारे, क्या खूबसूरती है इस गरारे।
1: इस ग्रांड खास थे महाराज कम से कम कोई 1972 में था भाई बस प्रमाद जी आए थे इनके ग्राम में था पैदल प्रमुख जी गया थी है
0: अच्छा
1: तो तीन ये एक जगह सिलेक्ट कर थी ये डी जगह नहीं रिपोर्ट खाई साया
0: अच्छा
1: एडी सेवा पेट पे आधा बुझ सकता है
0: अच्छा
1: तो तेज टाइम में थी ये भले जमाने भले 1956 57 अंदर ये आके सरकारी बगीचा दिता तो
0: अच्छा जी
1: हाँ जी तो सो जड़ी दिलों से मेन पहचान है गवर्नमेंट ऑर्चर्ड आ जाए डिस्ट्रिक्ट मेरा शायद पहला ऑर्चर्ड आ
0: अच्छा
1: हाँ जी 8,000 दे लगभग पौधा ही
0: जी
1: हाँ जी तो आज तो पहले तो काफी प्रोडक्शन दिंदा तो कोई 22 लाख 25 लाख 28 लाख आजकल जो 15-17 लाख का ब्रिचरी हुए जी
0: अच्छा
1: हाँ जी ये तू से जो ग्लोबल दिस गाल होना है ये 20,000 200 50,000 देख कर मतलब
0: दो
1: ले से रात जब जगह है ना जी
0: बिल्कुल बिल्कुल 2050 में हिमाचल में बर्फ 2050 तक लगभग अधिक ग्लेशियर के अंश समाप्त भूने की कतार पर नहीं अनुमान लगाओ कर देन कछु
1: हाँ जी हाँ
0: के।
1: जी इन ग्रां तो सामने जी काली छो दार है काली छो जो तो जड़ा जो लावला जो त्रप देना जी
0: जी।
1: तो ठेरा बर्फ हो रंधा सी होता तो बर्फ भी गया सो गया वे जी पहले बड़ा थला दिखला अच्छा रंधा तू दार बिल्कुल हाची हुई नहीं थी
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो ऐसा सो भी ऊपर ऊपर की थल्ले काई ले पे हो ना तो चूड़ी चूड़ी पुट्ठी रही हुआ जी हूँ तो सो तो साफ उदार ना सी हो सामने
0: हाँ जी,
1: के वाकई अगले से तो घर बंद है
0: गलू कर देने। बड़ा चिंता रहा विषय जी, असु सब भी वास्ते ना है करू न कर दे, सिर्फ अपना अपना हीरो कर दे, अपने अपने ईगो मा रेव कर देना है ना।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: ये
1: जी
0: बड़ा बड़ा चिंता रहा विषय जी, ये बड़ा गंभीर विषय हो रही है।
1: जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: 2050 तक के सो लगभग लगभग अधे ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा। और फिर जो जीवन यापन है सो करखा थोड़ा खतरे अंदर तक पेगा ना फिर, है ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी और बुजुर्ग बंद है जी हर साल सर्दी अंदर सर्दी बढ़ जाएगा चुकान दिया गर्मी अंदर गर्मी बढ़ जाएगा चुकान दिया तो लगू बंद है कि ग्लोबिंग वार्मिंग जड़ी है सर्दी ना लग रहा अपना चमत्कार दस ना लग रहा
0: बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की यह है चमत्कार अपना बिल्कुल दसना लू रहा है बिल्कुल। पर चलो हल्ले भी समय आया है ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ लगान है ना, प्रित
1: हाँ
0: अपना पर्यावरण जो कि है सो सुरक्षित रखना, तेरा विनाश ना करना है। मनु है कि सो अपने फायदे वास्ते है, अपनी मूलभूत सुविधा वास्ते कि सो पर्यावरण रहा बड़ा नाश करो
1: जी जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: है ना। लेकिन चलिए फिर हल्ले भी मौका सो लेके है थोड़ा करे कि सो चीज़ा जो बैलेंस करी करे रखना है ना, प्रकृति
1: जी
0: जो कि है सो संभाली करे रखना, संजोई करे रखना।
1: जी जी जी ताए फ्यूचर ना इनका स्टैंड ना तो काम खराब है जी नहरे
0: हाँ
1: अंदर लाइफ आगू हाँ
0: हाँ बिल्कुल नहरे अंदर है लाइफ,
1: जी हाँ जी
0: ये सोचना चिंता, ये चिंता रहा विषय है, ये हर आम नागरिक वास्ते भी चिंता रहा विषय। और इन्दे जो नेता सेता नहीं इन्या वास्ते भी चिंता रहा विषय, इन्यों भी इस बारे किया सो सोचना चिंता।
1: ये जड़े जी अब नवा छोटे भैया ने ते बने जी ग्राम रे प्रधान बदून ज्यादातर यहाँ री जागरूकता तो ऊपर जागरूक बुना ऊपर एमएलए ते एमपी रे काम ना जी ग्राम जो हरा भरा रखना ये
0: बिल्कुल
1: नवा
0: बिल्कुल
1: जड़े नवा राज्य जागृत नवा जे पब्लिक आ या नवा प्रधान नवा मेंबर नवा बीडीसी नवा जिला परिषद ये सारे काम जी हल्के हल्के अपने ग्राम जो हरा भरा रखना
0: बिल्कुल बिल्कुल त्यार है, बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल। और ये बड़ी मोटी गल बल्ले तो है कि प्रधान उप प्रधान है ना, वार्ड पंच बुझ गया, बीडीसी मेंबर बुझ गया, जिला परिषद बुझ गया, यहाँ रहा काम भी है। और चलो एमएलए रहा काम भी बुझ गया कि कभी कभी मतलब ज़्यादा ना समय निकाल ले करता, चलो महीने आके मौके कर खन कर खा कुछ ना कुछ इस प्रकार रह गया सो मीटिंग रखाई करी तय करवाई देता है ना जी। कजो के पर्यावरण पर्यावरण के सो सुरक्षित रहे लताई त चीजा आगू चल रही है ना।
1: हाँ जी हाँ जी इन ठाक सिंह प्रमोद जी।

0: प्रधानमंत्री बंदे तो यही तक चंदन ले करे खड़ा का चक्कर ना साढ़े पहले जे मक फाके जी तेजपुर बहुत बढ़िया बढ़िया कलैनी ने तैयार झीली के बूटे ला जी है सुख ना रहे सब सब गलेसरे अंदर चले गया कोई लुड़ गया बरखा बरसाती लुड़ गया ना तो तीन चार ठार इतने बढ़िया बढ़िया पार्क बनोड़ी थी इं कि आनंद चली जो तेरी भैन है
1: खत्म हो गया ठाकुर सिंह परमोरी जी रही था गल ही कुछ निराले थी ना जी सो तूने ही अच्छे गायकार भी हैं है ना अभी लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी तीन हो गए एक कार्यक्रम थो तड़ी हूँ एंकर थो अमन जो एज ए एंकर हदूरत थो तड़ी तड़ी हुई थी मुलाकात अपना नरवाणा है ना जी जी धर्मशाला में ही
0: जी जी जी
1: हेरिटेज नरवाणा करी करे एक पहले सही रही तड़ी बोई थे तिन्यो की तो मैं कोशिश करी थी तिन्यो गीत गुआने रे और तिन्या गाओ भी बड़ा बेहतरीन तो
0: रोन की मन नाच तो बड़ा नाम में ना
1: रोन की मन हूं ना जी
0: हाँ जी हाँ जी रोन की तक सेंस चलिया थोड़ा ना बाकी तो ठीक
1: है हाँ सेंस चलिया बाकी तो सब ठीक है
0: हाँ जी हाँ जी
1: चलिए ठीक है जी तो कुछ दिन गीत हूं पसंद कर ले जनाब
0: पर
1: कदी तो है गया नहीं ना ना जी
0: ना जी ना कभी मौका ना मोल वाले
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी
1: ठीक है जनाब बड़ा अच्छा लगा तो है टीचर ने वैसे तो है दसो है ना जी
0: हाँ से रिटायर भी छुरे जी बाई अंदर
1: अच्छा बाई है रिटायर भी छुरे क्या
0: हाँ जी आज के थोड़ा और सांबरा स्कूल आ सांबरा स्कूल के तो आज रिटायर भी छुरे जी
1: अच्छा अच्छा तब रिटायरमेंट तो बाद कदे चल रही जिंदगी दंदे
0: बस जी आख पोत्र परिवार को कुल मलाई करे तुम जी तो सब ठीक आ रहा बना बाग दो मुंडे ठूनी रे बह करी ली रे ना आख पोत्र बुझी छूरा
1: जी
0: हां जी हां जी
1: क्या बात है चलिए हरे भरे बाग लगना चाहिए और बागरा मालक की सो तुसु इया बोना चाहिए हसमुख मिजाज रहा है ना जी
0: चलो जी ठीक है जी बड़ा बड़ा जी तुम्हारा धन्यवाद गल मतलब मीडिया ने पहुंचाए देते सब बिठारी
1: जी
0: हां जी हां जी
1: चलिए ठीक है जी जरूर तुंदी फरमाइश में गीत होने ले तुसु है
0: ठीक है जी प्रणाम जी प्रणाम दुई हाथ जोड़े कर तुसियो
1: तुसु भी जी दोनों हाथ जोड़े करे और सर झुकाए करे प्रणाम नमस्ते
0: ठीक जी ठीक
1: जी श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और फिलहाल तब वक्त बचो श्रोतो तुझ तो अलविदा लेने रहा फिर मूल दिन थोड़ी देर थो बाद है ना और बिल्कुल अमू राजपूत हरिओम हरिओम अमू जी हरिओम और सदैव सोगी रिंद ने है मुलाकात बड़ी घट मुंदी ने लेकिन मुलाकात के न सो मायने न रख दी दिल मायने रख दे कि दिल मिलना चाहिए न सो इंदे मिल रहे है ना तो फिलहाल ताऊ सचिन कपूर ले लेनो इजाजत भरमोरा री किनारी चल दें छोतो जो इंदी जन्मभूमि सब भी रे ऑलमोस्ट तस किनारी चल दें और ये प्यारे दे गीत के सो हुन दें अपने जो इंदे गुरु जी थी है सो गे कनेक्टेड ताऊ सचिन कपूर ले लेनो इजाजत हंसद रहे मुस्कुरंद रहे माँ बाप री सेवा जरूर करा श्रोतो सियाने भी सेवा जरूर करा श्रोतो और खुश रहे तंदुरुस्त रहे पर्यावरण जो सुरक्षित किया सो जरूर रखा इन शब्द थो हम लेनो इजाजत अपनी वाणी जो दिनों विराम नमस्ते धर्मशाला।

0: audio.
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास समाचार आप सुनेंगे सचिन कपूर के साथ बुलेटिन आज का। भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, लोर्ड्स में जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। खुद खरीदनी होगी अब नौवीं की किताबें, जरूरतमंद को मुफ्त। 2050 तक हिमाचल में आधे ग्लेशियर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शित और गुणवत्ता की सख्त निर्देश। बेस्ट टीचर रिसर्च अवार्ड को नामांकन। आइए अब समाचारों को पढ़ते हैं विस्तार के साथ। याचिका भाटिका के शतक, समृद्धि के दोनों पारियों में अर्धशतक। क्रांति कौर के 5 विकेट और ऑफ स्पिनर स्नेहा राणा की 4 विकेटों की बदौलत भारत ने लॉर्ड्स पर खेले गए एकमात्र महिला टेस्ट मैच के अंतिम दिन में इंग्लैंड को 220 रनों से हरा दिया। जी बिल्कुल श्रोताओं, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है। भारत ने पहली पारी में 265 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 170 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को 115 रनों की बढ़त मिली। CBSE में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की विद्यार्थियों को अब नए सिलेबस की पाठ्य पुस्तक स्वयं खरीदनी होंगी। स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने सभी CBSE समृद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश जारी किए हैं। CBSE स्कूल में 9वीं की नई किताबों को लेकर शिक्षा निर्देशालय के निर्देश के बाद नई पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो चुकी हैं। विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इन्हें खरीदना होगा, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित ना हो। हिमाचल में वर्ष 2025 तक लगभग आधे ग्लेशियर समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बढ़ता तापमान, सर्दियों में घटती बर्फ और बिगड़ता हाइड्रो क्लाइमेट चक्र इसकी मुख्य वजह है। बिल्कुल श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश सेल के अध्ययन में ये चेतावनी दी गई है कि यदि संतुलित विकास और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ग्लेशियर का पिघलना जो है, ग्लेशियर का टूटना जो है, वो तय है। इसका असर हिमाचल के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की जल सुरक्षा पर भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं से लेकर शिक्षित पात्र परीक्षा तक कार्यप्रणालियां सभी को अचूक और पारदर्शी बनाने के लिए जो है वो बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस उच्च स्तरीय मंथन में विद्यार्थी हित सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ परीक्षा प्रबंधन में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कड़ा संदेश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की हर गतिविधि और परीक्षाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शित और समय के साथ होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को आपसी मेल स्थापित जो है वो करते हुए निर्देश दिए गए हैं। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयास से प्रदेश में अब 5वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य जो है वो बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक सेवाओं से युक्त CBSE स्कूल स्थापित कर रही है तथा उनमें शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर जो है वो गर्व होगा। प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेस्ट टीचर एंड रिसर्चर अवार्ड के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक शिक्षक अथवा संबंधित विभाग के आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों सहित 18 जुलाई तक नामांकन डीन ऑफ स्टडीज कार्यालय में स्थापित अवार्ड नामांकन समिति के माध्यम से जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ये पुरस्कार उन शिक्षकों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने शिक्षा उत्कृष्ट शोध उपलब्धियों तथा एकेडमिक सेवा में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना में शामिल 450 मेगावाट क्षमता वाली शुंगा टुंगा कड़छम परियोजना को लेकर जो है वो अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर बन रही इस परियोजना को मार्च अप्रैल 2027 तक हर हाल में चालू किया जाए। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुंगा टुंगा कड़छम परियोजना हिमाचल की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सरकारी खजाने को भी मजबूत करेगी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक के 72 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। निर्देशालय ने रिक्त पदों की रोस्टर तथा पात्र संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जो हैं वो भी जारी किए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्ते, बने रहिएगा वीडियो गुंजन के साथ।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।
1: क्या ख्याल है आपका,

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।
1: Right, my name is Anthony Gonsalves.

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और शाम का ये समय है, शाम के 6 बज गए हैं। श्रोता हूँ, आप सभी जानते हैं ये जो समय है ये रहता है आपके लिए आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपके साथ लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ हमारे सभी श्रोता ठीक ठाक होंगे बिल्कुल और अपने कामकाज के साथ साथ मनोरंजन के साथ यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी जुड़े बैठे होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का जो समय है अब शुरू हुआ है और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का समय रहता है रोज़ाना इसी समय यानी कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का सफ़र हम तय करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ। तो जितने भी श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और इन 2 घंटों में हम आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाएँगे और आपका मनोरंजन करवाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो जो श्रोता आ चुके हैं और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो श्रोता नहीं आए हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। तो श्रोताओं, 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर भी हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के साथ जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन सबको भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग और उम्मीद करते हैं हमारे वहाँ के श्रोता वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। श्रोताओं, बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचानी हैं लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ। तो लेते हैं आज का विचार। आज का विचार हमें यही कहता है श्रोताओं कि जीवन में हर चीज़ तेज़ दौड़ने से हासिल नहीं होती, कुछ अनमोल चीज़ें हैं जो ठहर कर हासिल होती हैं जैसे सुख, शांति और सुकून। बिल्कुल श्रोताओं, ये था आज के कार्यक्रम का विचार और इस विचार पर विचार भी कीजिए और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत अब हम करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो लीजिए, आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत बेताब फिल्म से। लता मंगेशकर और समीर कुमार की आवाज़ों में ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, इस समय आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ, और कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ेंगे और आपके साथ करेंगे बातचीत। श्रोताओं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे मौसम को लेकर कि मौसम जो है वो अब थोड़ा सा बादल जो है आ गए हैं, और ऐसा अनुमान है कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो सकती है। श्रोताओं, ऐसे में हम अपने धर्मशाला की बात करें तो यहाँ बारिश तो नहीं हो रही होती, लेकिन पहाड़ों पर बारिश हो रही होती है, जिससे कि हम लोग देखते हैं हमारे जो नाले हैं, खड्डे हैं, वो बिल्कुल भरी हुई आती हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बारिश हो रही होती है। तो ऐसे में हम हमेशा कहते हैं कि बरसात का ये मौसम है, और ऐसे में हमें पहाड़ों की ओर रुख नहीं करना चाहिए, नदी नालों से दूर रहना चाहिए। साथी श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में थोड़ी सी बात करेंगे शाम की। शाम के जैसे ही 5 बजते हैं, हर कोई अपने अपने कार्यस्थल से घर की ओर रवाना हो जाता है, चाहे वो पैदल जाते हों, चाहे वो दो पहिया वाहन पर चलते हों, चाहे वो चार पहिया वाहन पर चलते हों। तो श्रोताओं, रोड पर कई बार ऐसा होता है कि सभी जल्दबाजी में होते हैं, हर किसी को ये होता है कि बस ट्रैफिक बढ़ जाने से पहले पहले हम इस ट्रैफिक से निकल जाएं। और ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, हम ज़रा सी जगह देखते हैं, खास करके दो पहिया वाहन वाले जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए होती है निकलने के लिए, और वो जैसे तैसे निकलना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये जल्दबाजी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, बहुत सारे हादसे इसी वजह से होते हैं। तो कई बार हम में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं, और कई ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कई बार हमें ले डूबता है। इसलिए श्रोताओं, हम यही कहेंगे, जब भी हम रोड पर चलते हैं तो चाहे हमें 5, 10, 15 मिनट थोड़ी सी देर हो जाएगी घर पहुँचने में, या जहाँ भी हमें जाना है, हो सकता है देर हो जाए, लेकिन वो देर भली है। अगर हमें कोई नुकसान हो गया तो उससे बेहतर है कि कोई बात नहीं, हम आराम से चलेंगे, और 10-15 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। और श्रोताओं, रोड पर जब हम चलते हैं तो कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो इंडिकेटर दे देते हैं कि हम लोग रुकने वाले हैं, खास करके ये जो चार पहिया वाहन वाले होते हैं, गाड़ी या जीप वाले, वो लोग इंडिकेटर देते हैं कि हमें रुकना है, और रुक भी जाते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें पता नहीं क्या याद आता है कि नहीं, उन्हें नहीं रुकना है, उन्हें चल देना है। और ऐसे में जो पीछे से वाहन वाला आ रहा होता है, चाहे वो दो पहिया वाला हो या चार पहिया वाहन वाला हो, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा हम लोगों को, एक तो सारा दिन हम लोगों पर प्रेशर होता है काम का, हम अपने अपने कार्यस्थल से निकलते हैं इसी होड़ में कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं, और उस जल्दबाजी में बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। हम खुद तो हादसे का शिकार होते ही हैं, लेकिन साथ में पैदल चलने वालों के लिए या साथ में और वाहन वालों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो ध्यान रखिए, आराम से चलिए, किसी को भी नुकसान ना हो और आपको भी कोई नुकसान ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें रोड पर। तो श्रोताओं, बातों को हम यहीं विराम देंगे और चलेंगे, आगे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन गीत संगीत का जो ये सिलसिला अब शुरू हुआ है वो 8 बजे तक चलेगा। तो चलते हैं कार्यक्रम में, एक और तराना छेड़ते हैं और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। लीजिए सुनिए शतरंज फिल्म का ये गीत।

बिल्कुल श्रोताओं, ये प्यारे प्यारे गीत अभी आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और कार्यक्रम इस समय चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता भी काम करते करते रेडियो के साथ जुड़े होते हैं, हमें ये मालूम है। और काम करते समय गीत संगीत जब हमारे कानों में पड़ता है तो कहीं ना कहीं काम करने का मज़ा और बढ़ जाता है और थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने कभी ये आज़माया नहीं है तो ज़रूर आज़माइएगा, आपको सच में अच्छा लगेगा कि ये संगीत सुनकर काम करने का अपना ही मज़ा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला मनोरंजन के साथ साथ आप तक पहुंचाता है जानकारियां भी। तो चलिए अब चलते हैं जानकारी की और लेते हैं एक जानकारी आपके लिए। सहायक आयुक्त कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय सेना द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 24 जुलाई को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने फायरिंग रेंज के निकटवर्ती कोहाला कचियारी खोली इसके साथ ही घुरकड़ी गांव के लोगों से आग्रह किया है कि 24 जुलाई को निर्धारित फायरिंग प्रशिक्षण के समय फायरिंग रेंज के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें और अपने पालतू जानवरों को भी दूर रखें। श्रोताओं, ये जानकारी आप तक पहुंचाई है और इस जानकारी को आपने अपने तक सीमित नहीं रखना है। आपको जो भी कोई मिलता है वहाँ के आसपास के क्षेत्र से, तो उन तक ये जानकारी आप लोगों ने ज़रूर पहुंचानी है, किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे। कई बार श्रोताओं ऐसा होता है कि हम तक जानकारी होती है लेकिन उस जानकारी को हम किसी तक पहुँचा नहीं पाते हैं, या कई बार दिमाग से निकल जाता है और किसी को उस जानकारी से कोई ना कोई लाभ मिलने से रह जाता है। इसलिए जब भी आप तक कोई जानकारी पहुंचती है तो उसे औरों तक भी पहुंचाया कीजिए। और कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं गीत संगीत भी। तो लीजिए फिर से पेश करते हैं कार्यक्रम में एक और खूबसूरत सा गीत, कल की आवाज़। इस फिल्म का गीत श्रोताओं आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और भी हैं, गीत और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और बातचीत हम करने वाले हैं बहुत खास श्रोताओं। तो कार्यक्रम को छोड़कर, यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला को छोड़कर आप कहीं भी नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के साथ इस छोटे से अंतराल की बात भी

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं गीत संगीत के साथ साथ कार्यक्रम में हम करते हैं बातचीत और कार्यक्रम में आप फिर से बढ़ेंगे बातचीत की और श्रोताओं थोड़ी सी बात करेंगे कि सोशल मीडिया किसी हद तक कहीं हद तक जो है वो बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। बहुत अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे या बहुत सी ऐसी चीज़ें ढूंढने में करेंगे जो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होती हैं, लेकिन कई बार हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उनसे मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं और कुछ सुनने के बाद भी हम उससे सीखते हैं। तो आजकल जो है फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए श्रोताओं ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहाँ माता पिता प्रताड़ित किए जाते हैं उनके बेटे उनके बहू से। और श्रोताओं ऐसे में कई बुज़ुर्ग जो हैं वो गुहार लगाते हैं अपनी लाइफ के लिए और शिकायत करते हैं कि उनके बेटे उनकी बहुएं जो हैं वो उन्हें तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो श्रोताओं जब ऐसी खबरें हम देखते हैं या सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सब

तो नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें तो शायद लगता होगा कि हम बहादुरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस ये चीज़ें अच्छा नहीं समझते हैं, उन लोगों के उसमें व्यूज़ भी सुनने को देखने को मिलते हैं और सीखने को भी मिलता है कि श्रोता हम जब ऐसा करते हैं तो हम एक बात जो है वो भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी कभी बुज़ुर्ग होना है, हमने भी कभी किसी के सास ससुर बनना है, हमारे भी बच्चे हैं, हम पर भी वो समय आएगा। लेकिन यही तो एक बात है जो हम भूल जाते हैं श्रोताओं, लेकिन वो समय ज़रूर आता है। कहते हैं ना कि कर्म हम करते ज़रूर हैं लेकिन उसका फल देर सवेर हमें ज़रूर मिल जाता है। छोटी सी एक कहानी है श्रोताओं, बहुत पुरानी कहानी है, हमारे दादा परदादाओं के टाइम की कहानी है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एक छोटी सी दो चार लाइनों में आपको वो कहानी सुनाऊंगी। एक पिता था, उस टाइम एक रिवाज होता था कि जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे काम के नहीं रहते थे, जो कोई भी काम नहीं कर पाते थे, सिर्फ और सिर्फ बेड पर रहते थे, तो उन्हें वो लोग जो उनके बेटे होते थे या जो भी वहाँ उनके बाद की जो पीढ़ी होती थी, वो उन्हें लकड़ी का एक बनता था, बांस का शायद, किरडू बोलते हैं उसे हम लोग, तो उसमें उसे अपने पिता को या माता को डालकर किसी घने जंगल में छोड़ आते थे। तो कहते थे कि अब इनका हमारे उसमें कोई काम है नहीं, हम पर बोझ ही हैं, तो इनको छोड़ आते हैं। ऐसे ही एक जो बाप था, मतलब किसी बच्चे का बाप था, वो अपने पिता को छोड़ने के लिए जा रहा था और उसका जो बेटा है वो ज़िद करता है कि पापा मैं भी साथ चलूँगा, और वो जंगल की तरफ चले जा रहे थे और उस बुज़ुर्ग को उन्होंने पीठ पे जो किरडू डाल रखा था उसमें, मतलब वो टोकरा टाइप होता है, उसमें अपने पिता को डालकर जंगल छोड़ने के लिए जा रहे थे। जंगल आ जाता है, वहाँ पर वो जो जिस बुज़ुर्ग को बेटा लेकर आता है छोड़ने, वो उसे छोड़ता है। तब जो उसके साथ छोटा उसी का बेटा चला हुआ था, तो वो कहता है कि पापा इस किरडू को मत छोड़ना, मतलब भूल मत जाना लेके वापस जाने के लिए। तो बाप कहता है कि क्यों, क्या हुआ, इस किरडू का हम क्या करेंगे। तो बेटा कहता है कि जब आप बुज़ुर्ग हो जाओगे तो मैं आपको किस में डाल के छोड़ूंगा जंगल में। उस समय उस पिता को उस बच्चे की बात बहुत खलती है, समझ में आती है कि आज मैं अपने पिता को जंगल में छोड़ने आया हूँ, कल को मेरी संतान भी इस चीज़ के लिए तैयार बैठी है, और उसे गिल्टी फील होती है और उसे लगता है कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो अपने बाप को जंगल में नहीं छोड़ता है और वापस अपने साथ ले जाता है। लेकिन श्रोताओं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने वो पिक्चर आएगी कि हमारे साथ क्या हो सकता है, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अगर हमारे साथ होगा तो हमें कैसा लगेगा। तो ये छोटी सी कहानी थी जो हमने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनी थी, आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुनाई है, और कहने का भाव यही है कि माता पिता जब तक हमारे पास रहते हैं, सौभाग्यशाली हमें समझना चाहिए और उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए, और जब तक वो हैं तो ये समझिए कि हमारे घर में बरकत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं स्टंट मैन फिल्म का गीत। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय, और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी आपने सुना ये गीत, ये आंखें हैं आईना मेरी ज़िंदगी का। श्रोताओं, ये आंखें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आईना ही होती हैं, क्योंकि दूसरों की आंखों में हम जब देखते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कह नहीं पाते, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। कैसी भी बात हो, उसके दिल में कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो आंखें बयान कर देती हैं। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए वो नज़र चाहिए, वो दिल चाहिए होता है। बिल्कुल श्रोताओं, बिल्कुल सही बात कही है कि ये आंखें कुछ ना कुछ ज़रूर कहती हैं, और कई बार किसी के बोलने से पहले ही आंखें इशारा कर देती हैं कि वो किस मूड में है, किस बात करने के मूड में है। तो श्रोताओं, आँखों को पढ़ना भी एक कला है, और ज़रूर इस कला को हमें भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें सीख चुके होते हैं और समझ जाते हैं हर बात को बिना बोले। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम हर बात तो नहीं बोल पाते, लेकिन कई बार हम एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल से कनेक्शन जब होता है, तब ये आंखें काम आती हैं कुछ भी कहने के लिए। तो श्रोताओं, अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए और इस प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं, और इन्हें जोड़ कर रखना आजकल की डेट पे बहुत मुश्किल है। हम लोग सिर्फ़ एक समय ही नहीं देते एक दूसरे को, अदरवाइज़ हमारे पास सब कुछ है। हमें बस क्या चाहिए, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान, कपड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ रिश्तों की ज़रूरत होती है, वहाँ रिश्ते ही काम आते हैं। तो दूसरों के पास आप कितना भी चले जाइए, लेकिन जब अपने हमारे पास नहीं होते हैं, तब हमें लगता है कि सच में ज़िंदगी में कुछ कमी तो है। तो अपनों को अपने पास रखिए और अपनों के साथ कुछ समय ज़रूर बिताया कीजिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं श्रोताओं, और शाम का ये समय है, और इस समय खास करके हमारी जो घर की गृहणियाँ हैं वो घर के काम में व्यस्त होती हैं, अपने किचन में काम कर रही होती हैं, और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। तो श्रोताओं, घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार घर की चार दीवारी में रहते रहते महिलाओं को अकेलापन, थकान और एक जैसी दिनचर्या महसूस होने लगती है। ऐसे में उनका मन खुश रहे, इसके लिए परिवार और समाज दोनों की भूमिका बड़ी ज़रूरी है। महिलाओं को चाहिए कि वे रोज़ कुछ समय अपने लिए निकालें, सुबह या शाम थोड़ी देर टहलने ज़रूर जाएं, किसी पार्क में बैठें, मंदिर में जाएं, अपनी सहेलियों या पड़ोस की महिलाओं से मिले जुलें, नई किताबें पढ़ें, संगीत सुने, योग करें, बागवानी करें, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमने हमारे पास हुनर होता है, लेकिन समय ना होने की वजह से वो हुनर कहीं छुप सा जाता है। तो अपने मन को खुश रखने के लिए फिर से अपने उस जोश को जगाइए और उस हुनर को फिर से निकालिए और उसमें जुट जाइए। कहीं ना कहीं आपका मन भी लगेगा और आत्मविश्वास जो है वो भी ज़रूर बढ़ेगा। तो श्रोताओं, इन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, और अपनी इस बात को यहीं पर हम विराम नहीं देंगे, आगे भी इस पर चर्चा आपके साथ ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले सुनेंगे प्यारा सा गीत, तो चलते हैं सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत।

0: प्यार है तुमसे,
1: कहाँ है
0: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
1: हाँ हाँ 91.2 मेगाहर्ट्स पर श्रोता हूँ, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में आपको सुनवाया हमने ये प्यारा सा गीत। श्रोता हूँ ये जो गीत हैं ये कहीं ना कहीं हमें गीत गाने पर मजबूर कर देते हैं, और कई बार ऐसी धुन सुनकर नाचने का भी मन कर जाता है। तो श्रोता हूँ काम करते करते एंजॉय भी करना चाहिए अपने गीतों को, अगर गीत सुनते हैं आप और गीत गुनगुनाने का मन करता है तो गुनगुना भी लेना चाहिए, क्योंकि शाम का ये कार्यक्रम रहता है और हम यही चाहते हैं कि आप लोग अपने दिन भर की थकान हटाएं और इन गीतों के साथ मस्त हो जाएं। तो चलिए गीतों के इस सिलसिले को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और आप तक पहुँचाएँगे आंसू बन गए फूल फिल्म का एक और प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और इस कार्यक्रम का समय जैसा कि आप सभी जानते हैं शाम को 6 बजे से लेकर रहता है 8 बजे तक का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें आज बहुत सारी करनी हैं और जानकारियाँ भी आप तक और भी पहुँचानी हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे समाचारों का समय जो है वो हो जाएगा। तो समाचारों से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक और गीत। इम्तिहान फिल्म का ये गीत श्रोताओं आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए, सुनिए इस गीत को।

भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगामी हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों के बाद श्रोताओं एक बार फिर से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगा हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और जो 6 बजे से हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी और जो थोड़ी सी देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार और गुड इवनिंग। तो कार्यक्रम में हम करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ और आज हम कर भी रहे हैं आपके साथ बातचीत और साथ ही सुनवा रहे हैं आपको गीत। तो श्रोताओं समाचारों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ। लीजिए आप तक हम भेज रहे हैं ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में।

इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और ये दो घंटों का सफ़र जो है हमारा आपके साथ, बातों बातों में पता नहीं चलता कि कब समाप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है, और ऐसा ही आज भी हो रहा है श्रोताओं। और घड़ी की सुइयाँ फटाफट चल रही हैं, और कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हमारी रह जाती हैं कई बार आपके साथ करने के लिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई लड़की कोई गलती कर देती है तो सबसे पहले उसकी माँ की परवरिश पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब कोई लड़का गलती करता है तब बहुत कम लोग होते हैं जो पिता को बोलते होंगे या घर वालों को बोलते होंगे। तो श्रोताओं, बात लड़का लड़की की नहीं है, जिम्मेदारी की है, और बेटा बेटी कोई भी हो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, चाहे वो माता है चाहे वो पिता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बेटियां गलत करती हैं, अगर बेटियों से गलती हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ माँ ज़िम्मेदार होती है। बच्चे हमारे अपने होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और जब कहीं किसी को समझाने की बात आती है, उसकी परवरिश की बात आती है, तो मेरा ये मानना है कि माता पिता दोनों का ही बराबर का हाथ उसमें होना चाहिए। अगर अच्छा हो जाए तो एक बाप जो है वो बड़े ही सीना तान कर कहता है कि मेरे बच्चे हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, और अगर गलती हो जाए तो कहीं ना कहीं माँ पर उंगलियाँ सब उठाते हैं। तो श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बच्चों को हमें बराबरी में ही पालना चाहिए, समझाना चाहिए, प्यार भी देना चाहिए, और कहीं कोई ऐसी बात हो तो वहाँ पिता को भी आगे बढ़कर अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। तो कार्यक्रम में हम और भी बातें आपके साथ करेंगे श्रोताओं, लेकिन फिर से कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे प्यारे से गीत की ओर, और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत शिकारी फिल्म से। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट पर।

श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी गीत पसंद आते होंगे जो आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुनाए जाते हैं। श्रोताओं, गीत कैसे भी हों, जब भी हमारे कानों में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। और हमारा जो एक ध्यान है ना, कई बार हम अकेले हों और कोई बात करने वाला ना हो तो हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कई बहुत सारी बातों में उलझे हम रहते हैं। और अगर गीत चल रहा हो तो कहीं ना कहीं गीत के साथ हम हो लिए जाते हैं। तो श्रोताओं, गीतों के साथ ज़रूर बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रोताओं की, बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर होता है, उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। बच्चे की शिक्षा जो है केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। श्रोताओं, जब माता पिता बच्चों को पढ़ाई में रुचि, बच्चों की पढ़ाई में वो लोग रुचि लेते हैं, उनसे रोज़ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उनका होमवर्क देखते हैं और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों का भी देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे वह पढ़ाई को बोझ नहीं मानते बल्कि सीखने का अवसर समझा जाता है। हर बच्चे की क्षमता अलग हो सकती है, इसलिए उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करने की बजाय उसकी मेहनत की प्रशंसा करें। साथ ही श्रोताओं, आजकल स्कूल्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब कि घर में हमें उन्हें बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो देनी चाहिए। क्योंकि आए दिन हम बहुत सारी खबरें ऐसे पढ़ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, तो बहुत सारी जो बातें हैं बच्चों को परवरिश के दौरान हमें सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। और जो बच्चे आजकल हिंसा की तरफ दौड़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमें वापस लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत ख़राब है, क्योंकि उसकी झलकियां हम आजकल देख ही रहे हैं। तो श्रोताओं, आप इशारा समझ गए होंगे कि किस पढ़ाई की बात हो रही है और क्या हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी बहुत समझदार हैं। तो श्रोताओं, बातों को यहीं पर देते हैं विराम और फिर से पेश करते हैं कार्यक्रम में एक और गीत, आजमाइश फिल्म का गीत। श्रोताओं, अब आप सुनने जा रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत उन श्रोताओं के लिए था जो अभी सोच रहे थे कि हम भी अब कार्यक्रम छोड़कर चले जाते हैं, रेडियो सेट से दूर चले जाते हैं, तो उन्हें हम यही कहेंगे कि आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी बात बाकी है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय अभी बाकी है। श्रोताओं, साथ दिया है तो आगे भी दीजिए और पूरा साथ आपको देना ही पड़ेगा। खैर, हमें पता है हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी बातों के साथ जुड़े रहते हैं और मनोरंजन के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करेंगे अपनी सेहत को लेकर। सेहत को लेकर यही बात करेंगे श्रोताओं की, बहुत समय से यानी कि गर्मियों के समय में जो बॉडियाँ थी वो उनका पानी सूख चुका था और अब जब से दो चार बारिशें अच्छी हुई हैं तो बॉडियों में पानी फिर से आ गया है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि जो बंद पड़ी बॉडियाँ थी आपकी, जो सूख चुकी

पानी जो है वो गंदा ना हो, और कई लोग तो पीने के लिए भी उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं, पीछे बहुत सारा कचरा बहुत सारा कूड़ा छोड़कर चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है श्रोताओं की बॉडियाँ जहाँ भी होती हैं वहाँ हम अपने कपड़े धोने के लिए लेके जाते हैं, और साथ में सर्फ़ का पैकेट लेके जाते हैं, डिटर्जेंट का पैकेट लेकर जाते हैं। सर्फ़ तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन उस पैकेट को, खाली पैकेट को वहीं छोड़ कर चले जाते हैं, वहीं फेंक कर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ बनी हुई नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक होने लग पड़ती हैं या वहाँ कचरा इकट्ठा होने लग पड़ता है। तो श्रोताओं, अगर हमने बॉडी का इस्तेमाल किया है तो उस बॉडी की साफ़ सफाई का काम भी हमारा ही है, कोई दूसरा नहीं आएगा हमारी बॉडी को साफ़ करने। एक इंसान अगर ऐसा करता है तो दूसरा सोचता है कि इन्होंने ऐसा किया है तो मैं क्यों साफ़ सफ़ाई रखूं, मैं भी वैसे ही करूंगा। इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देख के दो लोग और भी ऐसा करेंगे। इसलिए अच्छा काम कीजिए जिसे देखकर और लोग भी अच्छाई की ओर आगे बढ़ें। तो यही कहेंगे कि पानी के जो ये स्रोत हैं इन्हें, इनकी सफाई का ज़िम्मा हमारा अपना है, इसलिए इनका ख्याल रखिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। आजकल के समय में बहुत लंबी लंबी घास जो है वो उगाती है, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा घास है वहाँ तो उसे निकाल फेंकिए और वहाँ की साफ़ सफाई पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये थी थोड़ी सी बातचीत आजकल के इस समय में जो हम साफ़ सफाई की कर सकते हैं उस बारे में। और अब फिर से वापस लौटेंगे गीत की ओर, और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, नीला आकाश फिल्म का ये गीत।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। तो श्रोता हूँ, अब आगे बढ़ेंगे और आपके साथ बात करेंगे कि वक्त किसी की अकड़ नहीं छोड़ता। समय का चक्र जब घूमता है तो सबकी अकड़ ढीली कर देता है। जिन महलों में बैठ कर हुक्मरानों के नाम का सिक्का चलता था, आज वो महल खंडहर बन गए हैं। दीवारों में पीपल के पेड़ उगाए हैं। जिन कपड़ों पर अंग्रेजों का अभिमान था, उन्हें आज बैंडबाजे वाले पहनते हैं। जिन आलीशान हवेलियों के दरवाज़ों पर कभी हाथियों और घोड़ों की कतारें लगी रहती थी, चौपालों पर महफिलें सजती थी, आज वहाँ चमगादड़ बसेरा करते हैं। वक्त ना तो किसी की अकड़ छोड़ता है और ना ही किसी का गुरूर। ये एक ऐसा तराजू है जो हर चमकती चीज़ को एक दिन मिट्टी में मिला ही देता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसान को अपनी कामयाबी या ऊंचे वक्त पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। श्रोता, ये लाइनें मैंने भी कहीं पढ़ी थी और अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था कि आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। ज़रूर इन लाइनों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है वो अब आप सभी समझ गए होंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से लिए चलते हैं आपको गीत की ओर। होटल फिल्म का ये गीत अब आप सुनने जा रहे हैं आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और थोड़ी सी बात करेंगे अनुशासन को लेकर। हमें चाहे जितना मर्जी टैलेंट क्यों ना हो, अगर अनुशासित नहीं होंगे हम तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, और हमें अनुशासन जो है वो पालन करना स्कूल से ही सिखाया जाता है, घर से ही सिखाया जाता था, और हमें भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए, उन्हें भी अनुशासित रहना सिखाना चाहिए। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और हमें भी बढ़ना पड़ेगा आगे, और आपको सुनवाना पड़ेगा कार्यक्रम में एक और गीत। अजनबी फिल्म का ये गीत अब आप तक पहुंचा रहे हैं श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद अब समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। तो चलते हैं, सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग पंचायत में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का किया लोकार्पण, कहा पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की होगी आय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हिमकेयर योजना को लेकर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग हुई बेहतर। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने कहा केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय ले रही सुक्खू सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सोलन जिला की ममलीग पंचायत में ग्रीन पंचायत योजना के तहत 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ममलीग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से वर्तमान में करीब 3000 यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है और साल में करीब 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की आय होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है और पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करना इस दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
2: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हमारी एक सोच थी कि प्रत्येक पंचायत में प्रदेश की 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए और उस प्रोजेक्ट से जो आय होगी वो 25% पंचायत के विकास में और 25% उस पंचायत की जो विधवा बहने हैं, अनाथ बच्चे हैं, उसमें योगदान इनको मिले और 20% सरकार के खजाने में जाए। इस परियोजना से 14 लाख रुपया पंचायत को मिलेगा हर साल का।
1: इस दौरान कर्नल धनीराम शांडिल ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सभी वर्गों को अपना सहयोग देने का आह्वान किया ताकि हिमाचल चिट्टा मुक्त बन सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 422 मेगावाट किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के MOU के प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बनी है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई वित्तीय निवेश किए बिना प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित विश्वविद्यालय कोर्ट की 36वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान गतिविधियों को सामूहिक प्रतिबद्धता व संस्थागत नवाचार के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार विश्वविद्यालय को शिक्षा व अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करने की जरूरत बताई। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। इस बीच राज्यपाल ने शिमला के निकट जतोग छावनी क्षेत्र में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावी समाधान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता और ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक की मांगी गई जानकारी के जवाब में ये खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित जवाब में माना है कि सरकारी अस्पतालों में इस अवधि के दौरान पुरुष मरीजों की हिस्टेक्टोमी संबंधी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रहे और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को घोटाले का झूठा नाम देकर कीचड़ उछाल रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पिछले 3.5 वर्षों में शिक्षा विभाग ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भाजपा द्वारा कुछ परियोजनाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास पूरी प्रक्रिया के तहत किया गया है।
3: 3.5-4 वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सी उपलब्धियां हमारे विभाग के द्वारा हुई है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके सर्वेक्षण होते हैं, चाहे आप नैस की बात करो, जो जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मुझे आज परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो 21वें स्थान पे थे। आज निरंतर जो हमारी सरकार ने प्रयास किए, आज हम top 5 states में हमारी रैंकिंग है। हमारी चाहे नैस की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, वहाँ पर 18वें स्थान पे थे। वहाँ पर भी अगर हम राज्यों की बात करेंगे, हम top 3 states में हमें इसमें स्थान मिला है। 100% लिटरेसी हुई, आज केरला के साथ हमारी गिनती होती है।
1: रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा यदि श्वेत पत्र जारी करने की बात करती है तो उसे केंद्र की एनडीए सरकार के फैसलों पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
3: पत्र तो जारी करें, लेकिन साथ में भाजपा के हमारे मित्र वो भी श्वेत पत्र जारी करें जो वर्तमान की आपकी एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती की गई, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में कैप लगा दिया गया, जीएसटी कंपनसेशन पे विराम लगा दिया गया, इसी तरह से तो जो लोन लिमिट थी उसमें भी काफी कटौती की गई है। और अगर आप तुलना करेंगे जयराम जी के कार्यकाल के दौरान की और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान की, लगभग कोई प्रतिवर्ष आपका कोई 10-12 हजार करोड़ का अंतर आपको देखने को मिलेगा।
1: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वे आज किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के निगुलसरी में जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत बीपीएल परिवारों को इंडक्शन हीटर वितरित करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के पैसों से हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय लेने में जुटी है। नाहन से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि सिरमौर जिला में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की RDSS योजना के तहत 194.42 करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य चल रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने RDSS योजना के तहत हिमाचल को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
4: जिला सिरमौर के लिए RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 194.42 करोड़ की स्कीम चल और सिरमौर जिला में जितने काम बिजली के चल उसमें 194.42 करोड़ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये काम हो रहा है। कांग्रेस की ओर से ये बयान दिया कि बिजली के अंदर प्रदेश सरकार के एफर्ट्स के साथ ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ये बात बीच में नहीं कही कि ये जितनी राशि आई है ये 100% केंद्र सरकार की देन है।
1: स्टेट ओपन स्कूल के तहत इस वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाली कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई तक प्रवेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। किन्नौर जिला के शिपकिला से चीन व्यापार के संबंध में आज रिकांगपियो में उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिपकिला से व्यापार 1 अगस्त से आरंभ होगा जो 30 नवंबर तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग पंचायत में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का किया लोकार्पण। कहा, पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की होगी आय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हिमकेयर योजना को लेकर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग हुई बेहतर। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय ले रही सुक्खू सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और समाचारों के साथ साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, चलते चलते सुनेंगे कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत जिसे हम लेकर आए हैं, ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म से, और गीतकार हैं महेंद्र कपूर। तो श्रोताओं, आप सुनिए इस गीत को और मुझे यानी कि आपकी अपनी रेडी दो सुषमा को दीजिए जाने की इजाज़त।
5: मर कर भी तुमको

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आग तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आग तो ठीक करवाइए, फिर
1: ये से, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका

देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है। यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है, आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आग तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आग तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है, आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका, अब तो खुश हो ना।

2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

में आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आग तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आग तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है, आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका, अब तो खुश हो ना।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला

घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।